0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
2: 100 FM।
0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
4: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
2: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365।
3: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिल सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है। और अगर बरवक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज ना की जाएं तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम PTA।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट से जीती है रोहिरा काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
8: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यूफोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत ज़वाबित लागू हैं।

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा. और उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे खुशबाश होंगे इस मंडे मॉर्निंग में. मंडे कह रही हूं यार ट्यूसडे हो गई अब तो मेरी वो एक्साइटमेंट लेवल मंडे मॉर्निंग चलिए ओके. और अपने शो हम अपने शो का आगाज करते हैं कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. आज थोड़ी ज्यादा ही एक्साइटेड हूं मैं. और तो आज हम पढ़ रहे हैं सूरह तीन का तर्जुमा. तो आइए सुनते हैं. आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इंजीर की कसम और जैतून की और तूर सीना की और इस अमन वाले शहर की. बेशक यकीनन हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया फिर उसे हर नीचे से नीची हालत की तरफ फेर दिया मगर जो लोग वो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए तो उनके लिए बे इंतहा सवाब है. तो अब कौन सी चीज तुझे इंसाफ के छुटलाने पर आमादा करती है? क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं? सूरह तीन का तर्जमा और इसमें इंजीर की कसम खाई गई है और जैतून की. तो जैतून मतलब ऑलिव ऑलिव ऑयल. अब आप देखें कि कुरान में ऑलिव का जिक्र है और ऑलिव ऑयल की कितनी ज्यादा हेल्दी उसके बेनिफिट्स हैं. अब लोग साइंटिफिक रिसर्च है आप अभी जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि जैतून के तेल की कितनी सेहत के लिए फायदे हैं. और इस तरह इंजीर है. तो जो भी फल चीजें कुरान शरीफ में मेंशन्ड हैं उनके बहुत ज्यादा फायदे हैं और वो आपको जरूर खाने चाहिए. मतलब मेक इट अ प्रायोरिटी कि कुरान में जिस चीज का जिक्र है उनमें से एक शहद है दूध है तो ये बाकी चीजें भी खाएं लेकिन इन चीजों को प्रायोरिटी दें और आप देखें कि आपकी सेहत कितनी बेटर होती है. और राइट जी. और आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप कितने फ्लेक्सिबल इंसान हैं या नहीं. और लेकिन हम बातें बाद में करेंगे पहले हम पक्के दोस्तों की तरफ जाएंगे जो मेरे प्यारे बच्चे हैं पक्के दोस्त. और आज जो मैंने सोचा है ना कि मैंने जो है ना वो सारे बच्चों के नाम लेने क्योंकि बहुत दिन हो गए और तो फिर जो है ना आज हम वो वाले बच्चे जो है ना उनके नाम हम लेंगे जिनको मैं ये गाना डेडिकेट करने वाली हूं पक्की दोस्त का. और बच्चा पार्टी कैसी है स्कूल जा रहे हैं और नाश्ता किया है कि नहीं पहले तो मुझे ये बताएं. नाश्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट. जल्दबाजी के अंदर जो है ना नाश्ता बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि आप लोगों ने बड़े काम करने होते हैं स्कूल जाके. अम्मी अबू तो बाद में भी कर लेंगे नाश्ता लेकिन आप लोगों के पास टाइम कम होता है तो आप जितना अच्छा नाश्ता करोगे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो फिर आप उतना ही अच्छा अच्छा पढ़ सकते हो. ऑलराइट. और हमारे जो प्यारे पक्के दोस्त हैं वो है अरमान अहमद फराज इब्राहिम अबीहा और आयान इनाया अहमद अली एंड मोहम्मद अली आयरा आयजा इन आयरा उनीब शेर अली सिद्दा रहीम इकरा जोहा उमर अहमद सैयदा उम्मे हानी सैयदा हमना सैयद उबैद रजा हरीम फहद अब्दुल हन्नान नबीहा आदिल फनान जैन सुहेब सुदेस आमना हमाद वायज हानिया हुरिया अहमद नबीहा नबीरा सुबहान एंड समीहा कबीर मीना एंड मशाल हसन शरियार एंड मूसा ईसा अरमिश अरिशपा रिजवी नूरुलैन उमर शामीर अब्दुल मुखनी महरीन मोहम्मद अहमद अनाबिया अब्दुल हादी अब्दुल वासी अब्दुल रहमान असदन उर्वा रूहान एंड रायान एंड अनाबिया अब्रीश हमदान अजलान अलीशा जिया अरज जिया फसी मुर्तजा एंड दनीन एंड रायहा जलानी नुसरत एंड जावियार एंड जोरेज एंड रायत एंड जाशान एंड यजदान. ऑलराइट. इन तमाम प्यारे बच्चों के लिए है पक्के दोस्त का ये गाना. आइए सुनते हैं.

0: मेराज,
1: तुमको याद है ना हमने जो गिनती वाला गाना सीखा था?
2: हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
1: आज हम एक नया गाना सीखेंगे जो 1 से लेके 12 तक है।
3: पज्जो, क्या तुम मुझको भी ये गाना सिखा सकती हो?
1: हाँ लाल बेग, बिल्कुल, क्यों नहीं। बिलाल मकसूद, म्यूजिक बजाओ।

गिनती याद करने से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, जैसे वक्त देखना, जैसे किसी का फोन नंबर याद करना, या ये गिनना कि जग्गा ने कितनी जलेबियां खाई हैं।

आप सुन रहे थे पक्के दोस्त का ये ट्रैक. और बच्चों को आजकल इंग्लिश की काउंटिंग तो आ जाती है आराम से, लेकिन उर्दू की गिनती नहीं आती. तो उर्दू की गिनती भी आनी चाहिए, और कम से कम 50 तक तो आनी चाहिए, क्योंकि 100 तक तो एनीवेज बच्चों के लिए मैं कुछ बता रही हूँ. और राइट, सो बच्चा पार्टी, आई होप यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट डे अहेड. और मैं आपको बता दूं कि आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या @RJ समीहा इंस्टाग्राम पे. और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी हमारे जो है पक्के दोस्त गैंग का हिस्सा बन जाएं, तो आप हमें जरूर मैसेज करें अपने बच्चों के नाम. और राइट, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.

0: 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
2: मतलब?
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
2: स्पेशल तो लग रही है.
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.
4: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
6: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
0: And
7: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.

तो वो पुराना वाला बॉस याद आता है, कहते यार वो तो एंजल है। खैर एंजल तो खैर कोई नहीं होते, पता नहीं बॉस बन के या लीडर बन के या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन के, पता नहीं कौन सा गंदा वाला रूप लोगों का बाहर आ जाता है, पावर की एडिक्शन या नशा ऐसा होता है। और राइट, आप लोगों के मैसेजेस का इंतजार रहेगा मुझे, आप मुझे मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या आज समिया इंस्टाग्राम पे। और अभी हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं टेलर स्विफ्ट की आवाज में ये गाना।

0: Digital Bank. Easy wala bank.
1: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। ईजी पैसा डिजिटल बैंक, ईजी वाला बैंक।
2: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagayein sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagayein. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat aur zawabit lagu hain. अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे ₹1,000 का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata per Jazz Cash se 50% cash back. Aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhaago!
5: This program is brought to you by
6: Phoenix Laga aur Bhool Ja, Phoenix Laga aur Bhool Ja.
5: And
7: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
5: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ja.
8: Like us on facebook.com/FM247365.

वेलकम बैक, आप हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। आज हम बात करेंगे कि क्या आप एक फ्लेक्सिबल इंसान हैं, और दुनिया में सरवाइव करने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और क्या कहते हैं। और आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, सैयद उमेर का मैसेज आया हुआ है। सैयद उमेर कह रहे हैं कि जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई सेल्फ एंड माई डॉटर फातिमा उमेर, शी इज लिसनिंग टू योर शोज, प्लीज से हाई टू हर। हेलो फातिमा, हाउ आर यू? फातिमा, मैं आपका नाम भी अपने पक्के दोस्त की लिस्ट में शामिल कर देती हूँ। तो फातिमा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो और आपकी स्कूल टाइमिंग्स क्या है? मुझे पता चले ना कि मेरी लिसनर्स जो है वो किस टाइम पे स्कूल जा रहे हैं, तो जरूर बताएं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे। अच्छा जी, और आप लोगों के और भी हमारे पास क्या कहते हैं मैसेजेस आ रहे हैं। आज हम ये बता जानना चाह रहे हैं कि आप फ्लेक्सिबल हैं, कि आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं। आबिद अमीर और याया हमीद और आमिर जफर सिद्दीकी का भी मैसेज आ गया है। वो कह रहे आमिर जफर सिद्दीकी कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। करंट ऑनगोइंग सिचुएशन से लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इसलिए लोगों के अंडर फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं आ रही है। लोग गुस्से में आ जाते हैं, सोल्यूशन नहीं निकालते। वैसे अगर बंदा फ्लेक्सिबल हो, स्ट्रेस फ्री हो, तो उसके बहुत से काम आसान हो जाते हैं। माई एडवाइस टू ऑल लिसनर्स, प्लीज बी फ्लेक्सिबल विद पीपल ऑल अराउंड यू। इंसान को दूसरों के साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन अपने साथ ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बंदा अगर अपने साथ स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो वो कभी जिंदगी में, उसके लिए तरक्की करना बहुत मुश्किल है, अपने गोल्स अचीव करना बहुत मुश्किल है। फी इज नॉट डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट विद हिमसेल्फ, कि नहीं कि टाइम पे। जो लोग कामयाब होते हैं वो उनकी कुछ थोड़ी से डिसिप्लिन हैबिट्स होते हैं, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, हर चीज ही नहीं खा लेनी। और तो मतलब, लेकिन जो लोग दूसरों के मामले में आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, कि यार ये आई थिंक जिंदगी जीने का एक तरीका है। दूसरों के लिए आप बहुत माफी दरगुजर करना चाहिए। हमारे यहाँ गरीबों का कानून अलग है और अमीरों का कानून अलग है। अगर गरीब बंदे से एक्सीडेंट हो जाए तो उसको जेल पहुंचाना तो फिर इनका फर्ज बन जाता है, लेकिन अगर किसी अमीर बंदे से एक्सीडेंट हो जाए तो कोई मसला ही नहीं है, पैसे दे दो उनकी फैमिली को, माफ कर दो। ठीक है, उस बंदे ने माफ कर दिया आपने क्या कहते हैं, लेकिन आपने क्यों माफ, स्टेट ने कैसे माफ कर दिया? गरीब बंदे, गरीब का बेटा मर जाए तो वो प्रोटेस्ट करेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, तो फिर क्या कहते हैं, उसके कातिल नहीं पकड़े जाएंगे फिर भी। लेकिन अगर अमीर का बेटा मिल जाए, फिर आप लॉ देखें ऐसे का तैसा, उसके तो पूरे खानदान को लॉकअप में कर दिया जाएगा, और ये नजर नहीं आता। और यहां पे जब भी, तो पाकिस्तान में रहने का दिल नहीं चाहता आपको, क्योंकि पता है कि ये लॉ भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। याया हमीद कह रहे हैं कि यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इफ यू आर अ हार्ड लाइनर यू कांट मूव विद सोसाइटी, फ्रेंड्स, इवन एट होम। सब्र, शुक्र, आजिजी उन्हीं लोगों में होती है जो नरम तबीयत रखते हैं। समिया जी, स्टे ब्लेस्ड, लवली मैसेज याया हमीद साहब, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। तो अब मतलब ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि लोगों के साथ आपको फ्लेक्सिबल होना ही चाहिए। इसके अलावा मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में अभी तक कारोकारी और ऑनर किलिंग पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, और उसमें पैसे वाले भी हैं, और वो मतलब लोग इतने ज्यादा क्या कहते हैं रिजिड है, कि मतलब अगर कोई बंदा अपनी पसंद से शादी करना चाह रहा है तो कौन सी कयामत आगे भाई, क्यों मतलब। और हमारे यहाँ, हमारे खानदान में ऐसा ही होता है, लोग खानदान में ही शादी करते। ऐसे खानदान को तो मैं सिर्फ खानदान भी ना कहूं, कि भाई कौन हो भाई तुम लोग, क्या तुम्हारे खानदान ने मुल्क की खिदमत की है, क्यों तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम करते आ रहे हो सदियों से जहालतें, तो वो भी आगे ही वो भी जहालत है, हमने तो खानदान में शादी करनी है, हमारा खानदान वैसा। वो भाई पाकिस्तान में ना किसी का खानदान कोई बहुत हाई फाई नहीं है, पहली बात है। हम एक गरीब मुल्क में रहते हैं, और जिन्हें बनाया ना हमारा सरदार, हम ये सरदार, हम वो कबीला, हम वो वडेरे, वो भाई कुछ नहीं है, मुल्क से बाहर जाए कोई इज्जत नहीं है। इंसान एक फर्द है, वो अपने काम से पहचाना जाता है। अगर आप अपने माँ बाप के या फिर खानदान से पहचाने जाते हैं तो अफसोस है आपकी जिंदगी के ऊपर। इंसान कुछ ही अपने कारनामों से कि हाँ आपके बाप दादों ने बहुत नेक काम किए हैं, अस्पताल बनाए, तो चलो काबिले इज्जत है जी। वो वडेरे थे जी, वो अपनी जमीनों पर, उनके पता नहीं 200 हारी थे, जो जालिम इंसान थे, उस पर आपने क्या फख्र कर लेना है। और वो ये कास्ट, हमारी कास्ट, उसे हम भी उसे मेरे अबू भी कहते राजपूत, राजपूत, वॉट राजपूत यार, मतलब हमारे घर के आगे भी लिखा हुआ है राजपूत हाउस।
लेकिन इट डजेंट मैटर कि आपके बाप दादा ने क्या किया, व्हाट मैटर्स इज कि आप क्या कर रहे हो. तो ये जो जहालत वाली बात है ना कि हमारे खानदान में शादी होती है या हमारे यहाँ ना ये रूल नहीं होता, हमारे पसंद से शादी की तो मार देंगे, मतलब प्लीज. और अभी तक हमारा लॉ, वैसे अफसोस है गवर्नमेंट वालों को तो डूब मरने का मकाम है इनके लिए कि अभी तक वो ऑनर किलिंग ही नहीं रोक पाए. और सिंध के मिनिस्टर सिंध में कहती हूँ कराची के पीछे पड़े, अपने गाँव के तो हालात देख लो तुम लोग हैं, वो आए उबड़े कराची, मतलब रहने दो. इस बारे में हम बात कम ही करें तो अच्छा है, क्योंकि दिल दिल को कुछ होता है मेरे. आप सॉरी, आपको टेंशन ना ले, जिन्होंने हमें भी ज्वाइन किया, मैं बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने लचकदार. मुझे ना वो कमर याद आती, कमर लचक खा जाए. इससे पहले कि मैं मजीद क्रेजी बातें करूं, आइए हम गाना सुनते हैं. आप लोग मुझे मैसेज करें आज ये समिया के फेसबुक पेज पे, या आप और भी जगह, हाँ पैसे दा नशा सोने फिलहाल, ओके इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं.

वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. और मुझे कहते हैं आपकी दोस्त, सबकी होस्ट और साथ साथ आरजे समीहा भी कहते हैं. और हम लोग आज बात कर रहे हैं कि क्या आप एक फ्लेक्सिबल इंसान हैं या फिर कहते हैं यार बस जो मैंने सोच लिया ऐसे होता ना, दादा हुजूर ने ये फैसला कर दिया है तो वो फैसला पत्थर पे लकीर है. तो अब लेकिन अब तो खैर लोग बड़े फ्लेक्सिबल हैं, बल्कि अब तो ये हो गया कि दादा हुजूर ने जो कहा है तो फिर वो जनरेशन उल्टा ही करती है उसकी. और आर्यन सारी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस टॉपिक, थैंक यू. आई बिलीव फ्लेक्सिबिलिटी इज वन ऑफ लाइफ्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, बट इट मस्ट हैव क्लियर बाउंड्रीज. आई एम अडैप्टेबल व्हेन इट हेल्प्स अदर्स और क्रिएट्स हार्मनी, बट व्हेन इट कम्स टू माय फेथ, कोर वैल्यूज, इंटेग्रिटी, फैमिली वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज. इस्लाम टीचेस अस काइंडनेस एंड पेशेंस, बट ऑल्सो फर्मनेस इन वॉट इज राइट. टू मी बैलेंस मीन्स नोइंग वेयर फ्लेक्सिबिलिटी इज अ स्ट्रेंथ एंड वेयर स्टैंडिंग फर्म इज द राइट चॉइस. बहुत अच्छी बात की है. कहीं कहीं इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, होना पड़ता है बिजनेस डील्स के अंदर, कोई रिश्ता बनाने के लिए, कोई रिश्ता निभाने के लिए. मगर कहीं कहीं आपके कुछ आपके अपने उसूल होते हैं, जैसे कि मजहब है, कुछ चीजों पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. लेकिन आज आई डोंट नो, कोई कह सकता है, कोई दावेदार है कि जी हम तो पूरा इस्लाम के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि हर चीज के अंदर इतना ज्यादा करप्शन है, सूद है, नशा लोगों को इतना कॉमन हो गया है हमारी सोसाइटी के अंदर. नशा गलत था और लोगों को लगता है कि जी ड्रिंक करना या अल्कोहल लेना ही हराम है, उसके साथ साथ ड्रग्स भी हराम है, क्योंकि अल्कोहल इसलिए मना है क्योंकि उसमें नशा है, इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठता है, इसलिए अल्कोहल को मना किया था. पहले जमाने में यही नशा था, लेकिन नशा हर तरीके का नशा एक गुनाह है और नशा हराम है. अगर हम अपने मजहब पे ही चलें तो हम इन कितनी सारी बुराइयों से जो आज सोसाइटी में इतनी ज्यादा कॉमन है, मतलब फैली हुई है, तो हम उनसे बच सकते हैं. तो कुछ चीजों के मामले में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आर्यन सारी, इंसान को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. और इसके अलावा और भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास. और हमारे पास इकबाल हुसैन और आबिद अमीर साहब का भी मैसेज आया हुआ है. इकबाल सिंह कह रहे अस्सलाम वालेकुम समीयशी, मेरी शख्सियत लचकदार है क्योंकि जो झुकते नहीं टूट जाते हैं, बस एक झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं. तो फिर तो आपको पूरी ये गवर्नमेंट या सोसाइटी ही बर्दाश्त नहीं है, तो झूठ पे ही चलती है यहां तो. मतलब अगर कोई बंदा भी बोले ना, छोटा सा काम भी बोलते हैं कारपेंटर को कि भाई कारपेंटर कारपेंटर भाई जरा आ जाना तुम, वो बोलेगा मैं आ जाऊंगा भैया, आप फिक्र ही ना करें, 3 बजे तक पहुंच जाऊंगा. 3 बजे फोन करेंगे, हाँ हाँ बस मैं पहुंचने वाला हूँ, ठीक है. 3:30 बजे फोन करेंगे, भाई दरवाजे पे हूँ. 4 बज जाते हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है, थोड़ी देर में फोन भी नहीं उठाएगा. तो यहाँ तो मतलब झूठ बोलने को कोई गलत समझा ही नहीं जाता. और ये मैंने आपको छोटी सी एग्जाम्पल दी है, तो बड़े बड़े झूठ चल रहे हैं, मतलब क्या बात हो रही है. लोग पैसे लेके भाग रहे हैं, दूसरों के कमिटमेंट्स अपनी पूरी नहीं करते. जाने दे, आप टेंशन ना लें, आप ये गाना सुने. ये वो बंदा, ये कुछ उसको समझ नहीं आ रहा बंदे को कि वो कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है कि मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता, मैं अजीब सा हो गया हूं. तो ऐसे अजीब सा इंसान का सुनते हैं अजीब सा गाना विद और विदाउट यू. और आप लोग मुझे मैसेज करें आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे और आरजे समीहा के इंस्टाग्राम पे.

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
2: बाजी का हफ्ता वार लकी ड्रॉ विनर सियालकोट तो रोहिला काशिफ ने ईवी बाइक जीती है। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब
4: इमेजिन पुश स्टार्ट मल्टीपल ड्राइव मोड्स क्रूज कंट्रोल पावर ड्राइवर सीट एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
5: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक।
8: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वी

0: to the bank. Easy wala bank. PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf rupees 4,999 mein. Aur paye free shock Android TV box worth rupees 15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।

0: बैंक इजी वाला बैंक।
1: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
2: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
2: And
4: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
2: And
5: Sir Sub Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM 247365.
8: Let's celebrate
9: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
10: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम
2: Step Schools se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: Hamari purani car to bilkul theek chal rahi hai.
4: Theek to hai, lekin special nahi.
3: Matlab?
4: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat. Alloy rims or sunroof.
3: Special to lag rahi hai.
4: Aur price sirf 64,49,000.
5: Ab samajh aaya. Ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: वाला बैंक।
1: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आजय समीहा। हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि क्या आप एक लचकदार इंसान हैं या नहीं, और हमने अभी तक आपके मैसेजेस से ये सीखा है कि कहीं कहीं इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राइट, जहां बात आपके किरदार पे, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी ना दिखाइए, एक रख के जमार लगाइए। वैसे आबिद मीर आपको याद है कि एक हमने आपको हर दिन पता होता है, इस दिन ये दिन है, इस दिन ये दिन है, इस दिन उदास होने का दिन है, इस दिन डांस करने का दिन है। सही है, एक दिन होना चाहिए जमार लगाने का दिन कि जो भी आपको अच्छा ना लगे जमार। मैं तो कहती हूँ एक दिन होना चाहिए गुटखा और स्मोकिंग करने वालों का जमार, जो पब्लिक प्लेसेस पे करना चाहिए, अलाउड होना चाहिए उन लोगों को थप्पड़ मारना, जहां हम नजर आए थप्पड़ जमार, इतना मजा आएगा ना। एक दिन तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जमार, वो मेरे पीछे बाहर किसी दिन ना गाड़ी खड़ी होगी आगे, मैडम आपने बड़ी बातें की, चले आप, अल्लाह बचाए। वैसे हाँ, तो आबिद मीर कुछ कह रहे हैं, अली रजा कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, और कह रहे यस वेरी मच फ्लेक्सिबल, व्हाट टू डू इफ यू आर फीलिंग डाउन एंड परेशान। इतनी अच्छी आपकी नौकरी है, इतनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, फिर आप परेशान हैं। आप टेंशन ना लें, आपके लिए अगला गाना हम लगा रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और हमें आरजे समिया का शो किस लिए है, शो सुनते हैं परेशान, ऐसी बात नहीं, हमारे लिसनर्स ही तो आपको मैसेजेस अच्छे अच्छे कर करके जो है ना वो आपको मोटिवेट कर देंगे। अदनान अहमद के मैसेज का मुझे इंतजार हो रहा है इस वक्त, वसी साहब पता नहीं कहां से लिया है, कभी कभी करते हैं वो। और आप इतने कह देखे समिया आपने इतना मोटिवेट कर दिया, मैंने न्यू कराची टाउन के इतने ज्यादा जान लेवे मसले मसाइल, बहुत ज्यादा कंपनियां ने सिस्टम से पंगा ले लिया है, अब संभाल लीजिएगा अगर गुमशुदा हो जाए। मुझे तो अपने आप पर शक हो रहा है वैसे आबिद अमीर। खैर, न्यू कराची टाउन के सामने गर्ल्स कॉलेज है, टाउन के बिल्कुल अजीब मुलाजमी रास्ते में आने जाने वाली कॉलेज की बच्चों को इस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। आप न्यू कराची टाउन वालों की खिंचाई करें, फिर न्यू कराची टाउन वालों सुधर जाओ। और लड़कियों से मैं ये गुजारिश करूंगी कि अपने साथ डंडे लेके चलें, ग्रुप में जाएं, अकेले ना जाएं, और पेपर स्प्रे लें। लड़कियों से लड़कों को डरना चाहिए, नो दी अदर वे राउंड। इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को बाहर निकलना चाहिए, जिन्होंने कैद की हुई है लड़कियां कहीं नहीं जाएंगी। जब भी इस माशरे का बुरा हाल है, भाई लड़कियां पढ़ाई लिखाई करें, काम करें। अगर आपको पता है लड़कियां उस तरीके से अगर बाहर मूवमेंट हो जाए तो कराची के अंदर लड़के कम और लड़कियां ज्यादा हैं, तो फिर लड़कों को टेंशन है कि हाय हाय अल्लाह तीन सारी लड़कियां। ऐसे कराची यूनिवर्सिटी में आप जाएं तो वहां लड़कों को लड़कियां छेड़ती हैं। लिटरली मैं दो लड़कों के तो वो आके मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि कराची यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने हमें छेड़ा। गर्ल्स वेक अप, ये आपको जब तक आप डरती रहोगी कोई आपको डराता रहेगा। तो आप ग्रुप में जाएं और साथ में अपना डंडा लेके जाएं, और मैं कहती हूँ और लड़कियों को आप जरूर जरूर ड्राइविंग लाइसेंस, ज्यादा जरूरी यहाँ पे है कि बंदे को गन का लाइसेंस होना चाहिए कि जहां आपको कोई गलत बंदा मेरे पहले मार दो, ताकि एक आध मारा जाएगा लड़का छेड़ने वाला तो फिर साथ उनको वो मिले। और मोहल्ले वालों को जहां हम देखें ऐसे लड़के लग के पिटाई करना शुरू कर दें, पता नहीं मैं तो कभी जब हैरत हो रही है मुझे ये सुन के, मुझे लगा था कराची के अंदर तो मतलब लड़कियां बड़ी कॉन्फिडेंट हैं और ऐसे वाकयात नहीं होते, तो अफसोसनाक बात है कि ऐसे वाकयात हो रहे हैं और लड़कियों को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो बस बहुत पिटाइयां की हैं लोगों की, इतनी जरूरत नहीं पड़ी है। एक्चुअली मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ तो मैं वहां बहुत सारी लड़कियां थी, और उसके बाद मतलब MBA के अंदर तो ऐसी टेंशन नहीं थी, वहां पे भी लड़के ही लड़कियों से डर रहे होते थे। मतलब हर जगह मैं देखा है कि लड़कियां ज्यादा डोमिनेंट है, तो लड़कियां हैं डोमिनेंट, उनको से अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए, और बेटियों को जरूर पावरफुल और करना चाहिए, और उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनी इंप्रूव करनी चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनसे वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, और जैसे अब जिम्नास्टिक है, फिगर स्केटिंग है, डांस है, बैले है, मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स जरूर सिखाएं, टाइकोंडो, कराटी। उसमें ये होता है कि आप जो है ना वो लोग जो हैं वो क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, उनको जरूर लड़कियों को आने चाहिए सारी चीजें, सेल्फ डिफेंस जरूर जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपने आप को ज्यादा बेहतर

ज्यादा बहादुर, ज्यादा खूबसूरत, काबिल इंसान बना सकते हैं। फिलहाल अली रजा साहब जो है ना बड़ी टेंशन में। अली रजा साहब आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपके लिए मैं ना एक गाना जो है प्ले कर रही हूँ, और ये गाना जो है ना वो आबिद अमीर को भी बड़ा पसंद है, तो ये आप दोनों के लिए खासतौर पर ये गाना है। आइए सुनते हैं सजाद अली की आवाज में।

आपका अली रजा, आपकी जरा मूड अच्छा हुआ आपका कि नहीं? सिर्फ मैं अली रजा से बात कर रही हूँ, ठीक है, और कोई ना सुने। हाँ अली रजा, तो ठीक है, मूड ठीक हो गया है? परेशान है आप? कोई बात नहीं यार, सुबह सुबह परेशान कभी कभी होता है ना इंसान को, समझ नहीं आता, मगर वो बस परेशान हो रहा होता है उसका, तो फिर ना बंदा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कराची ऑल इज वेल करे अपने दिल को। और कराची के अंदर तो बंदा हर वक्त ना, खास में जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं, तो आपको रहता है पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है इस शहर के अंदर। इतनी गंदी वाइब है यहाँ बस इन गवर्नमेंट की, इतनी गंदी वाइब है। अगर आप वही पंजाब में चले जाए ना, आप ये पाकिस्तान ही है, वहां वाइब ही डिफरेंट है, वहां की एयर ही कुछ डिफरेंट है। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वहां पता कैसी बातें हो रही है पंजाब के अंदर, ये नहीं कि वो लोग बड़े दूध के धुने हैं, लेकिन पंजाब के अंदर ऐसी बातें होती हैं कि उनकी चीफ मिनिस्टर कहती है कि नेक्स्ट बसंत जो है वो मार्च 12 को डिसाइड भी कर लिया अगले साल का प्लान कि हम किस दिन पार्टी करेंगे। कराची में कुछ ऐसा प्लान हो सकता है? कराची में हम नेक्स्ट डे का प्लान नहीं कर सकते कि कल हम क्या करेंगे, कल हम ऑफिस जा भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, कुछ नहीं पता। तो ये एक्साइटमेंट कराची के अंदर है। और राइट, और आपके लिए मैं एक और गाना प्ले कर रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं थोड़ी टेंशन होती हूँ, पता नहीं मुझे

0: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samiha.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
3: वीकली लकी ड्रॉ विनर सियालकोट से जीती है रोहिरा काशिफ ईवी बाइक. अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
5: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
7: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
8: अभी

0: बैंक।
1: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
3: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
4: at shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना?
6: सुबह अपनी कमाई से अपनी बहन की स्कूल फी पे करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
7: This program is brought to you by
8: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
7: and
9: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally,
7: and Sarsabs Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
10: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365

जी मैं वापस आ गई हूँ ब्रेक के बाद. और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और मिजाज कैसे हैं? और आज मैं जानना चाह रही हूँ कि आप कितने लचकदार हैं, जो फिजिकली आप कितने लचकदार हैं. वो बेचारे जो लोग, आप कहते हैं ना बॉडी स्टिफ हो गई है, तो अगर वॉक नहीं करेंगे, डांस नहीं करेंगे, तो बॉडी जो है आपकी स्टिफ ही होगी. लास्ट टाइम आपने कब डांस किया था? अच्छा, डांस के बारे में ना कुछ लोग कितने रिजिड होते हैं. जी हम तो कभी डांस नहीं करते. कोई फख्र की बात नहीं है कि आप मतलब आप डांस नहीं करते, मतलब ये तो ऐसे ही जैसे कि आप यू नो. मेरे भी तो खैर दो तरह के लोग हैं दुनिया के अंदर, कि एक जो डांस करते हैं और एक जो नहीं करते. और यू नो जो नहीं करते वो कहते हैं जी डांस करने वाले पागल हैं. मैं कहती हूँ हम पागल ही ठीक हैं, कम से कम आप किसी को दुख तो नहीं पहुँचाते. मैं आपको बता रही हूँ, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो सिंगर्स फनकार लोग होते हैं, वो दुनिया को तकलीफ नहीं पहुँचाते. दुनिया को तकलीफ पहुंचाते हैं सड़े हुए फिक्स्ड मिजाज रिजिड किस्म के लोग, यू नो, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, जिनके दिलों में ना सख्ती होती है, यही दुनिया को तकलीफ पहुंचाते हैं. यही फजूल किस्म के लॉज बनाते हैं, यही बॉर्डर्स बनाते हैं. आर्टिस्ट तो मोहब्बत का अलम्बरदार होता है, वो खुश रहता है मजे में, उसके जात से तकलीफ नहीं पहुंचती. ये जो कहते हैं ना नहीं नहीं आर्टिस्ट को मारो, म्यूजिक ये नहीं, डिफेंस वो डांस ये नहीं, मतलब हर चीज मनाए मनाए, खानदान में शादी करो, ये लोग जो है ना जो अपने रिजिड होते हैं ना, ये लोग ज्यादा दुनिया को तकलीफ पहुंचाते हैं. भाई कुछ अल्लाह के मामले अल्लाह के हाथ में भी छोड़ दो भाई, वो जाने कहते ना मैं जानू मेरा खुदा जाने, तो अल्लाह पे छोड़ दो. तुम लोग क्यों बन गए हो भाई, सबको बताने वाले तुम करो. और इनको बस मैं कहती हूँ, अक्सर जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, राज की बात बता रही हूँ, खूबसूरत भी नहीं होते. सही बता रही हूँ, क्योंकि खूबसूरत लोग ना उनको तकलीफ नहीं पहुंचाते ज्यादा, क्योंकि खूबसूरत लोग अपनी खूबसूरती में खोए रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है. जो अरे ज्यादा देख लो जितने भी ज्यादातर, ये नहीं कि ये कोई रूल है, खूबसूरत लोग भी मीन हो सकते हैं और अजीब भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा रूल ये है कि दुनिया को तकलीफ जितना अगली लोगों ने पहुंचाई है ना, उतना खूबसूरत लोगों ने नहीं पहुंचाई. वेल और कभी कभी शक्ल की बात नहीं होती, उनके अमाल ना उनके चेहरे पर आ जाते हैं. जैसे हमारे लीडर्स हैं, वो कितनी भी गाड़ियां ले लें, डालों में चले जाएं, उनके चेहरे पर ना कोई नूर ही नहीं है. यू नो बिल्कुल नूर से खाली है इनके चेहरे, और मजे की बात है चेहरे लेके घूम रहे हैं. और खैर चलिए आप लोगों के मैसेजेस की तरफ हम आते हैं. मैं जरा पता नहीं ब्यूटी पे जरा ज्यादा एक्साइटेड हूँ. रिजवान इस भी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू. अच्छा वो इतना ज्यादा सलाम मैं वबरकातहू तक पढ़ सकती हूँ. अच्छा उसके बाद और भी लोग, नज़ीर खोसो का भी मैसेज आया हुआ है. थैंक यू नज़ीर खोसो आपके मैसेज के लिए. और आबिद अमीर कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल समय ऐसा दिन मनाना चाहिए, और आज मनाया जा रहा है 19 अगस्त को आलमी सतह पर आलमी यौमी इंसानी हमदर्दी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जिसका मकसद इंसानी खिदमत करने वाले कारकुनों को खराज तहसीन पेश करना है. यार ये ऐसे ही दिन मनाते रहेंगे, कोई बात नहीं. मुझे आप बनाएंगे चमार डे का मनाना चाहिए. मैं टॉपिक रखना चाहती हूँ कि अगर आपको इजाजत मिले कि आप आज किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं, तो सबसे पहले आप किसको थप्पड़ मारेंगे? ये होता है टॉपिक स्लैप डे. लिटरली आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा, आप बस थप्पड़ मारें, अब अलाउड है आपको थप्पड़ मारना, तो किस किस को थप्पड़ मारेंगे जाके? ये दिन वर्ल्ड स्लैप डे. ओके जी, और फिर हम बात करें लचकदार लचकदार होने की. और इसमें एक बंदे ने और भी पहुंचा, आदिल हसन साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज किया हुआ था. कोई सुराही की बातें कर रहे थे कि जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नुगू होके भरा करती है पैमाना. अच्छा सर नुगू मैंने सही पढ़ा है? ये बड़ा मुश्किल, आज बड़ी मुश्किल उर्दू लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है. तो वसी साहब ये सर मैंने पढ़ा है सर नुगू, तो थैंक यू आदिल हसन, बड़ी अच्छी बात है कि सुराही झुकती है तो किसी और को वो कर सकती है. और कहते हैं फलदार दरख्त जो होता है ना उसे झुका हुआ होता है, और झुके हुए जो लोग होते हैं फ्लेक्सिबल होता है, और वो ज़्यादा मतलब लोगों के दिल में जगह बनाते हैं. फिलहाल तो हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हम मुझे ना ये गाना याद आ रहा है कमर. हालांकि जो इसमें कमर का इस्तेमाल है, मेरे रश के कमर, वो आपकी बॉडी वाली कमर नहीं है, ये है चांद मेरे रश के कमर के. तुम मेरे इतने खूबसूरत महबूब हो कि चांद तुम पे रश करते हैं. लेकिन ना जाने क्यों मुझे इस गाने से ना कमर का लचकना याद आ जाता है कि बंदा डांस करे. तो आइए चलते हैं और हम डांस करते हैं.

0: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ.
1: जी आप सुन रहे थे गाना अभी तेरी रश्के कमर और नहीं आप गाना सुन रहे थे मेरी रश्के कमर और बड़ा अच्छा ये गाना था. तो मैं चाहती हूँ कि आप भी जरा फ्लेक्सिबल इंसान बने, रोजाना योगा करें, पिलाटीज करें और मतलब एक्सरसाइज करें. स्ट्रेचेस बहुत जरूरी हैं उठते ही ताकि आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहे. बॉडी आप सोचें जब आप ओलंपिक्स देखते हैं तो आप होते हैं यार अल्लाह ने उसको भी बॉडी दी है तो मुझे भी बॉडी दी है. और मुझे सिंक्रोनाइज स्विमिंग इतनी अच्छी लगती है कि वो पता नहीं वो पूरा जिमनास्टिक करके फिर वो जाते हैं नीचे और मतलब इंसान की बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है. इसी तरह आपके ब्रेन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है. आपको लगता है कि यार एज के साथ में और नहीं पढ़ सकता, लेकिन जितना आप पढ़ते हैं, जितना आप रीडिंग करते हैं, उतना ही आपका ब्रेन स्ट्रांग होता है. तो अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी सलाहियतें दी हुई हैं. पाकिस्तान में जो बंदा तुम्हारी उम्र हो गई है अब तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी उम्र हो गई है तुम डांस नहीं कर सकते, तुम्हारी उम्र हो गई है तुम आगे नहीं पढ़ सकते. तो पाकिस्तान में जो लोग कुछ बोलते हैं ना आपको कि आप राइट जाएं, तो आपको उस टाइम पे लेफ्ट जाना चाहिए क्योंकि इनकी बातें सुनने में क्या फायदा, वरना अगर इनकी बातों में कोई दम होता तो आज हम दुनिया में कहां से कहां पहुंच जाते. लेकिन हम इसीलिए पीछे हैं कि हम बहुत गलत लोगों की बातें सुनते हैं जिनके पास ना एक्सपोजर है ना एजुकेशन. और राइट तो क्या कहते हैं हमें लेनी है एक ब्रेक. आप लोग मुझे मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे, आज समिया के इंस्टाग्राम पे. अब्दुल वाजिद साहब आपका भी मैसेज आ गया हमारे पास और आप लोग हमें ये बता रहे हैं कि आप कितने लचकदार इंसान हैं. आई सी यू आफ्टर दिस ब्रेक.
0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
3: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311117837.
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 1,000 रूपए का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
0: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
7: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
0: And
8: Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
9: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zehre qatil hai jiski sanjeedgi ka ehsaas insaan ko tab hota hai jabki zehr hamari ragon mein zaid kar chuka hota hai. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: FM 24/7/365. FM 24/7/365.

0: your location for maximum music.
1: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
4: facebook.com/fm247365 fm247365
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: your location for maximum music.
1: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राबता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और मौसूल होने वाला वन टाइम पासवर्ड दर्ज करें। अकाउंट बनने के बाद साइन इन करें और अपना CNIC और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन हो जाएं। याद रखें कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका यूजर नेम होगा। लॉग इन होने के बाद बाएं जानब मौजूद रजिस्टर न्यू कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब शिकायत की तफसीलात दर्ज करें और शिकायत की नौयत मुंतखब करें। इसके बाद शहर, सर्विस, फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें। اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: FM 247-365

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

on facebook.com/FM247365. FM247365.

Assalam o Alaikum, Pakistan, and Assalam o Alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya hal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji, as usually, hongi aap se khoob sari baatein. शेयर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ प्रोग्राम में होगा बहुत सारा म्यूजिक. भाई बहुत सारा म्यूजिक ये भी तय है, बहुत सारी बातें हैं ये भी तय है, तो बहुत कुछ होगा प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल में. तो उसके लिए कर लेते हैं प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से होता नहीं बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. सो लेट्स बिगिन.

ऑल राइट जी, तो वापस आ गए हैं, तो जरा मौसम पर भी नजर डालते हैं कि शहर कराची के मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। उस हवाले से भी आपको आगाही फराहम करते हैं क्योंकि कराची का मौसम है बहुत ही सुहाना और इस खूबसूरत मौसम पर इस कराची की तारीफ भी बनती है और मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल से आपको आगाही भी फराहम करते हैं। कराची में आज मौसम काफी खुशगवार है। आसमान पर घेरे समंदरी बादल छाए हुए हैं जबकि समंदरी हवाएं वक्फे वक्फे से चल रही हैं। शहर कायद में इस वक्त दर्जा हरारत 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है जो अगस्त के हिसाब से मामूल से कम है। हवा में नमी का तनासब 70 से 80 फीसद है जबकि समंदरी हवाएं 20 से 30 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चल रही हैं। आज दिन भर मौसम इस तरह खुशगवार रहने का इम्कान है। कुछ इलाकों में फुहार और बूंदाबांदी भी हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज 30 डिग्री तक जबकि कम से कम दर्जा हरारत आज 26 से 27 डिग्री रहने का इम्कान है। एंड दैट इज सो नाइस भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कराची में आपको ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की सी जो है वो ठंड सी महसूस हो रही है और इतना अच्छे मौसम के साथ ना बड़ा ही जो है ना कोई मजा आ रहा है कराची में। आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये वही कराची है जहां पे हम कुछ टाइम पहले मौसम का रोना रो रहे थे और वो रोना ये था कि जी इतनी गर्मी है कब मौसम अच्छा होगा। लेकिन इस दफा बस कराची वालों के साथ जो सुपर डुपर बैड लक रही है ना वो ये रही है कि कराची में बारिशें नहीं हुई और बारिशों का इंतजार करते करते ऑलमोस्ट साल ही खत्म होने वाला है और अब आगे भी कोई आई डोंट नो कि कोई होप्स हैं बारिश की। लेकिन कोई बात नहीं जी, बारिश नहीं तो अच्छा मौसम ही सही, हम इसी में खुश हैं और हर हाल में खुश रहना चाहिए। उदास रहना, मायूस रहना, इसका कोई फायदा नहीं है। सो बी हैप्पी एंड शामिल करते नाज़रीन की आवाज़।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. This is

0: system, but it's love for money.
1: ओके तो प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत हो गई कायम. हम आपको तरीका कार बता देते हैं कि कैसे आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा. तो जी जल्दी से आपने करना यह है कि आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करना है और वहीं पे हमने स्टेटस अपडेट कर दिया है. तो साथ ही साथ आपने वहां पर कमेंट भी करना है और हमें बताना है कि जी आपके लंच में क्या है. बिरयानी, निहारी, पुलाव, कबाब, दाल, चावल, पुलाव है या फिर कबाब है या फिर कुछ और मुनफरिद सा है, बड़े मजे का है, सब्जियां हैं, क्या आपके लंच में मौजूद है भाई, हमें जरूर बताएं क्योंकि हम इंतजार करते हैं एवरी डे ये जानने का कि आपके लंच में क्या है. या फिर लंच कहीं बाहर करने का प्लान है या फिर भाई इंतजार है कि भाई जो मेरा कुलीक लाया ना वो लंच जल्दी से गर्म हो और उसे खाएं, क्योंकि अक्सर औकात आपके कुलीक जो है ना वो बड़ा ही कोई वो कहते हैं ना जी बढ़िया जो है वो लंच लेकर आते हैं, तो वो करने का इरादा है या कोई और प्लान है, तो जल्दी से हमें बताएं भाई आपके लंच में क्या क्या है. क्योंकि जी हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का शिद्दत से इंतजार ये जानने के लिए कि आपके लंच में इस वक्त क्या है. अच्छा हेल्दी लंच है, अनहेल्दी है? अच्छा कभी कभी तो अनहेल्दी चलता है बट नॉट एवरी डे. लेकिन ना एक ये भी होता है कि चलो आज वहां का ट्राई करते हैं, वहां की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, वहां का ये चीज अच्छा है. अच्छा जैसे कि पुलाव और बिरयानी भी है ना, वो भी ऐसा ही है कि कराची में आपको हर तरफ हर जानब नजर तो आती है, मिल भी जाती है, लेकिन हर जानब हर तरफ आपको वो एक्चुअल वाला टेस्ट ना नहीं मिलता. तो उसके लिए ये रिसर्च आपकी जारी होती है कि बिरयानी या पुलाव वहां से लिया जाए जहां का टेस्ट बहुत अच्छा. और भाई ये मैं ये सिर्फ नहीं कहूंगी कि बाहर से अच्छा मिलता है, बहुत सारी खवातीन भी बहुत ही लजीज पुलाव और बिरयानी जो है वो बनाती हैं, तो उनके होते हुए फिर बाहर का लेना बिल्कुल गलत फैसला है. तो भाई आपके लंच में क्या है हमें जल्दी से मैसेज करें और कमेंट करें आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और बताएं कि आपके लंच में क्या मौजूद है. और भी बहुत सारी बातें हैं आपसे करेंगे लेकिन सबसे पहले आपसे जानते हैं आपका लंच. और उससे पहले हम चलते हैं एक अदद ट्रैक की जानेब. तो कौन सा ट्रैक शामिल करें? चलो जी आपको नबील शौकत की आवाज सुनाते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

0: Yes, everybody. So we are talking a lot. जी, बातों का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है. बहुत सारी बातें भी करेंगे, कुछ नए नए इंकशाफात भी आपसे शेयर करेंगे. उसी के साथ साथ हमें फराज हाशमी कहते हैं, आप सबसे अच्छा क्या कुक करती हैं मैम? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. लेकिन वो कहते हैं ना कि जी अपनी तारीफ खुद क्या करना तो मैं भी क्या अपनी खुद तारीफ करूं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना पास्ता अच्छा बना लेती हूं, मतलब चाउमिन या पास्ता, ये इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये मैं अच्छी बना लेती हूं. और इसमें मैं, मेरी तारीफ एक्चुअली घर वाले कर देते हैं, तो इसलिए मैं कह सकती हूं कि मैं ये अच्छा बना लेती हूं. और अभी तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना, मैं वो शौक से बना लेती हूँ तो वो अच्छी बन जाती है. वैसे मैं पास्ता वगैरह अच्छा बना लेती हूँ, सैंडविच भी अच्छे बना लेती हूँ. वैसे भी आपसे इस बात का जिक्र करते हैं, मुझे याद आया कि मुझे भी काफी चीजें आती हैं बनानी. भाई मैं बना लेती हूँ, कभी गौर नहीं किया मैंने कि काफी है. अभी मुझे इनके कहते याद आया कि जी आप सबसे अच्छा क्या को कर लेती हैं मैम, तो आप और चीजें बताएं. तो उसी के साथ साथ मैंने अपने जहन पे जोर डाला और मैंने याद किया कि मैं काफी चीजें बना चुकी हूं वैसे. तो इस पर मजीद बात करेंगे और सबके टैलेंट को भी जानेंगे. लेकिन उससे पहले एक अदद ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं. ट्रैक के साथ नहीं आते बल्कि हम खुद ही वापस आते हैं. तो कहीं मजा आएगा. वी विल बी राइट बैक.
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
2: It's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
1: This program is brought to you by
4: Step School से foundation हो strong. Call now at 0311117837.
1: Like us on facebook.com/fm247365.
5: FM247365.
6: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.
1: This is the lunchtime special. Only on FM 100.

0: आप क्या बना लेती हैं? तो मैं वैसे चंद चीजें बना लेती हूँ. मुझे एक चावल बनाने नहीं आते, और चावल मुझे अच्छे बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे ना चावल बॉईल करने आते हैं ना चावल बनाने आते हैं. और ये मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैं चावलों को नहीं बना सकती. सो दिस इज द वन थिंग दैट आई एम वेरी सैड कि मुझे चावल बनाने नहीं आते. और इंसान को हमेशा जो भी कहना चाहिए सच कहना चाहिए. तो मैं बिल्कुल सच कहूंगी कि मुझे चावल बनाने नहीं आते, और ना इनफैक्ट बॉईल भी करने नहीं आते. मैंने एक आध दफा बॉईल किए थे और वो बिल्कुल जो थे वो घुल गए थे. अगर अक्सर औकात में कोई ऐसी चीज बना रही होती हूँ तो उसमें जो चावल का प्रोसेस होता है यानी कि उन्हें उबालना या उन्हें मिक्स करना, तो वो मैं अपनी मम्मी से कह देती हूँ कि इसमें आप मेरी हेल्प कर दें. चावलों का सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, बाकी मसाला वसाला जो है वो मैं बना लूंगी. सो ये है मेरी अपडेट्स. अब आप भी अपनी अपडेट्स हमसे शेयर करें कि भाई आप लोगों को क्या खाने में पसंद है, और आपके लंच में इस वक्त क्या है, और आप क्या पका लेते हैं. और भाई ये सवाल आज हमसे फराज हाशमी ने पूछा है. और इसी के साथ साथ जल्दी से आप लोग जो है वो आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कमेंट करें, बिकॉज वहां पे हमने स्टेटस अपडेट कर दिया. अच्छा भाई, इसी के साथ साथ एक नई गुफ्तगू के साथ हम आते हैं. तो भाई, एक ऑन अ एवरेज मैन टेक्स जस्ट 12 सेकंड्स टू अपोलॉजी, व्हाइल वुमेन्स रिक्वायर्ड अप टू 9 आवर्स. ओ माई गॉड. यानी कि एक नए अंदाजे के तहत इस चीज का पता लगाया गया है कि अगर मर्द और औरतों इन दोनों के दरमियान अगर कोई नाराजगी हो जाए, जैसे कि मियां बीवी में हो गई या बहन भाइयों में हो गई, या कभी भी इस तरह अगर दोनों में नाराजगी हो जाए, तो मर्द हजरात सिर्फ 12 सेकंड लेते हैं अपोलॉजी करने में, यानी कि सॉरी करने में, जबकि खवातीन जो हैं जिनको 9 घंटे दरकार होते हैं, 9 घंटे बाद जाकर वो जो है वो अपोलॉजी की जानिब जाती हैं, जहां के मर्द हजरात सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड में जो है वो भाई माफी मांग लेते हैं. दैट इज सो नाइस. अब भाई इसमें कितनी हकीकत है? मैंने तो एक अदद खबर पढ़ी और आप लोगों को सुना दिया, लेकिन अब सच आपने बताना है कि क्या खबर है, कि वाकई में आपको 12 सेकंड लगते हैं. जो भी मर्द हजरात इस वक्त हमें सुन रहे हैं, क्या आपको सिर्फ 12 सेकंड लगते हैं अपोलॉजी करने में, या नहीं आपको भी खवातीन की तरह इतने ही घंटे दरकार होते हैं? और खवातीन भी मुझे इस बात का जवाब जरूर दें कि क्या आपको 9 घंटे लगते हैं या नहीं. भाई अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आप विद इन सेकंड्स मान लेती हैं. मुझे लगता है कि भाई सॉरी कर लेना चाहिए, एज सून एज पॉसिबल मसले को हल करें. इतना तवील करने ना मसले का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है. सो मामला आपको ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए भाई. लेकिन अभी एक रिसर्च, मतलब एक अंदाजे के तहत, नॉट रिसर्च, एक अंदाजे के तहत इस चीज का पता लगाया गया है कि मर्द हजरात माफी मांगने में सिर्फ 12 सेकंड लगाते हैं, जबकि खवातीन को 9 घंटे दरकार होते हैं, उसके बाद वो अपोलॉजी की जानिब जाती हैं. तो इस वक्त तमाम मेरे लिसनर्स में मर्द हजरात और खवातीन दोनों हमें बताएं कि इसमें कितनी हकीकत है, कितना वक्त लगता है आपको अपोलॉजी एक्सेप्ट करने में. So we are looking forward for your messages. तो अभी आप हमारे पेज पर मैसेज करें और हमें बताएं कि आपको कितना टाइम लगता है भाई अपोलॉजी. एक तो एक्सेप्ट करने का भी एक प्रोसेस होता है ना, बिकॉज आसानी से लोग नहीं मानते. आप आसानी से मान लेते हैं 12 सेकंड लगते हैं या 9 घंटे लगते हैं, हमें जरूर बताएं. आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कॉमेंट्स. अंटिल एंड अनलेस हम चलते हैं ट्रैक की जानेब, आते हैं वापस ट्रैक के बाद.
1: You could keep on because the force has got a lot of power.

जी तो मेरे दोस्तों आ गई हूँ मैं वापस। लोग वर्ल्ड भी हमें ज्वाइन करती हैं, कहती हैं लव यू लवली आरजे, थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छा भाई, तो लंच पे बात चल रही है कि आपके लंच में क्या, और उसी के साथ साथ ये भी पूछा जा रहा है कि

0: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: This program is brought to you by
2: Step School से Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाए,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचे, वेट से आगे का सोचें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
8: Join Fatima Khan.
7: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
8: Midday break a blast.
9: जी, तो बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन असल जो जोश पकड़ा है ना, वो हमारे इस सवाल ने पकड़ा है। सवाल ने इससे मुराद ये था कि भाई हमने कहा कि भाई ऑन एवरेज ये चीज देखी जाती है कि अगर मर्द और ख्वातीन के दरमियान लड़ाई हो, वो भले कोई भी रिश्ता हो, कोई भी ताल्लुक हो, तो उसमें मर्द हजरात माफी मांगने में सिर्फ 12 सेकंड लगाते हैं, जबकि ख्वातीन को 9 घंटे दरकार होते हैं कम से कम, और उसके बाद वो ये फैसला करती हैं कि चलो जी, शुड आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक और नॉट। लेकिन ये है कि लड़कियों का दिल जरा छोटा होता है तो वो जल्दी टूट जाता है यार, ये बात भी तो एक है ना कि सेंसिटिव दिल होता है। और वैसे ऐसी बात नहीं है, अगर दिल की बात की जाए तो ख्याल दोनों का ही बराबर रखना चाहिए, बिकॉज फीलिंग्स एक ऐसी चीज है जो दोनों में एग्जिस्ट करती है। उसमें सिर्फ हम खवातीन को नहीं कह सकते, भाई मर्द हजरात में भी फीलिंग्स होती हैं ऑब्वियसली, और उनकी फीलिंग्स को भी कोई हर्ट करे तो ये उन्हें भी बुरा लगता है। तो इस वक्त हम कुछ नहीं करेंगे, हम फेमिनिस्ट को सिर्फ सपोर्ट नहीं करेंगे, हम एक जनरल बात करेंगे कि भाई दोनों के लिए फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों हर्ट हो जाते हैं, दोनों नाराज जाते हैं। तो मैं तो इन दोनों सूरत हाल में ये कहूंगी कि जी सुलह सफाई करने में देर नहीं करें, क्योंकि बात करने से बात बनती है, तो बात को जल्दी हल कर लें। अच्छा, ये है कि वो जो कहते हैं ना, गरम गरम रोटी मत खाओ, इतना गरम गरम नहीं खाओ, तो चलो ठीक है, अगर ज्यादा बड़ा मसला हो गया है या ज्यादा बड़ा फड्डा हो गया है तो चलो जी थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन ट्राई करो कि सिचुएशन जो है वो एज सून एज पॉसिबल हल हो जाए। इसमें मैं दोनों के साथ हूं, चाहे वो मर्द हजरात हैं चाहे वो खवातीन हैं, बट आई बिलीव कि लड़ाई को जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि यार लड़ाई के बगैर तो बात करने में मजा भी नहीं आता ना, अगर बात करने में मजा ही ना आए तो फिर क्या ही कहने। खैर जी, लुकपल कहती हैं कि आज लंच में आलू बढ़िया हैं। अरे वाह, आलू बढ़िया मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टाइम से हमारे घर में बनी भी नहीं है। ओके जी, वैसे ये ट्रैक मैंने कल शामिल किया था, कल किया था परसों मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि नाराजगी पर बात चल रही है तो सज्जाद अली का ये ट्रैक तो कंपलसरी है, इसे करते हैं शामिल। और अगर कोई आपका अपना भी आपसे है नाराज तो उसे भी ये ट्रैक डेडिकेट कर दें और कर लें, सॉरी, डजंट मैटर।

ओके सो भाई सज्जाद अली का ये खूबसूरत सा ट्रैक हमने कहा चलो जी हम एंड में शामिल कर लेते हैं. और नाराजगी पर बात हो रही थी और हमने ये बात करी कि भाई कौन कितना वक्त लेता है मानने में. खवातीन और मर्द हजरात एक एवरेज तौर पर जो है वो मर्द हजरात 12 सेकंड लेते हैं जबकि खवातीन जो हैं वो 9 घंटे लेती हैं. और इसमें आपका कितना बिलीव है, आप कितना टाइम लेते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर भी बहुत तफसीली बात की जा सकती है. लेकिन भाई हकीकत यह है कि नाराजगी का कोई फायदा नहीं है. नाराजगी, लड़ाई, झगड़े ये जो है ना वो इख्तलाफात को मजीद बढ़ाते हैं, इसलिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने में कोई मुजायका नहीं है. तो जो भी मामला है, जो भी लड़ाई है, जो भी इख्तलाफात हैं उसे एज सून एज पॉसिबल हल करें, क्योंकि काम करना, किसी के साथ रहना, इसमें यह जरूरी है कि जी अगर आप हंस बोलकर हंसी खुशी एक साथ रहें तो बात ही अलग होती है. लड़ झगड़ के रहें, मुंह बना के रहना, तो ना आपसे काम होगा ना आपसे कोई बात होगी. तो इसीलिए जो भी नाराजगी और लड़ाई है उसे करें खत्म और दोस्ती का बढ़ा लें हाथ आगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब हंसते मुस्कुराते रहें. और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम. फराज हाशमी ने हमसे ट्रैक की रिक्वेस्ट बहुत लेट की है, तो फराज आप थोड़ा जल्दी कर लेते क्योंकि अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है. तो मैं ऐसा करूंगी कि इसे कल शामिल कर लूंगी, ठीक है जी. तो हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ. This program is brought to you by
1: Step School से foundation हो strong. Call now at 03111117837.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है.
3: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है.
2: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
4: हमारी जिम्मेदारी है. खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया. FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
6: जीनी इन रेडियो.

Radio.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo at Schwabe, Germany. Proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शौबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शौबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
0: This program is brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
4: Abhi Raja Ustad aa jayega, phir mujhe kamre mein le jaakar galat tarike se haath lagayega aur kisi ko batane se bhi mana karega.
5: Hamare maashre mein jinsi badsalooki ke waqiat sirf ladkiyon ke saath hi nahi hote, balki ladke bhi iska shikar hote hain. Ladke aur ladkiyon dono ki hifazat ka khayal rakhein, dono ko samjhaye, chahe apna ho ya paraya. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
9: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
10: FM 247365.
11: Listeners tell us about FM 100.
12: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
13: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
11: Number one music station. FM 100.
14: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio. With your very own RJ, Jasmine.

Alrighty everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर. तरीकेकार बहुत ही आसान है. जस्ट टाइप KHI then leave space, आपका मैसेज, आपका नाम, आपकी रिक्वेस्ट और से 3636 पर भेज देना है एंड facebook.com/rz.jasmine. इस पर भी आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर योर फेवरेट ट्रैक्स. ओके, बिलाल शेख ने हमें मैसेज किया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. एंड नूर ने मैसेज किया है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज नूर. एंड नूर हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग कॉल्ड ब्लॉकबस्टर. ठीक है नूर, आपके लिए हम ये प्ले कर देंगे. मलिक ने हमें मैसेज किया है. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक, आप बताइए आप कैसे हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. एंड मलिक हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग द ओएसटी ऑफ चल दिए तुम कहां. कभी मैं कभी तुम जरूर प्ले कर देंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. सो गाइज, थोड़ी सी देर में जो है हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, मैसेजेस करते रहिए facebook.com/rz.jasmine. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. द ट्रैक इज ब्लॉकबस्टर.

0: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: 100 FM।
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
3: It's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? किसका इंतजार है?
4: भागो!
5: Easy Paisa लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और Easy Paisa QR से पेमेंट करके 25% cashback हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। Easy Paisa डिजिटल बैंक, Easy वाला बैंक।
6: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
7: तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना? अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
8: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट से जीती है रोहिला काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
1: 100 FM।
9: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ। This program is brought to you by
1: Step School से foundation हो strong. Call now at 03111117837.
2: डेंगी एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
4: Favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

सो आप लोग बिल्कुल हमें मैसेजेस करें पेज पे ऑन facebook.com/rj.jasmine JASMINE. Alright, जनाब सो हम बात कर रहे हैं आज what is your favorite activity जब बारिश होती है. आप लोग हमें जो है वो बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं ऑन facebook.com/rz.jasmine JASMINE. Okay. And plus also, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फनी इंसिडेंट्स के हवाले से जो आप लोगों के साथ कभी हुए हो और आप लोगों ने कभी किसी के साथ शेयर ना किया हो. लेट अस नो, वो भी आप हमारे साथ आज क्या कहते हैं पेज पे शेयर कर सकते हैं ऑन facebook.com/rj.jasmine. सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर ट्रैक. ये निदा की रिक्वेस्ट थी. द ट्रैक इज दिल जानिया बाय हदीका कयानी. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा.

Okay, Janelle, welcome back. You're listening to F100 Pakistan. Okay, so hum baat kar rahe hain aaj. आप लोगों ने हमें मैसेज करना है पेज पे और बताना है कि बारिश के मौसम में आप लोगों की फेवरेट एक्टिविटी क्या है. यू कैन लेट अस नो ऑन आवर पेज. ओके, अफशा ने हमें मैसेज किया है. दिस इज अफशा फ्रॉम कराची. हाय अफशा, हाउ आर यू? एंड अ वेरी लॉन्ग टाइम लिसनिंग अगेन टू योर ब्यूटिफुल वॉइस. Please play the OST of Mere Paas Tum Ho dedicated for you. Thank you so much, Afshar. Really appreciate it. Bahut shukriya aapke message ka. Aap matlab kafi time baad mera show sun rahi hai. Chalna, ab sunte rehna hai. Theek hai? Wednesday, Thursdays are the timings of the show from 2 to 4 p.m. Theek hai? ओके, लाइबा ने हमें मैसेज किया है. लाइबा मुनव्वर, वालेकुम अस्सलाम. लाइबा, बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं, आप बताइए आप कैसी हैं? खैर, बारिश के मौसम में छत पे जाकर मैं टिकटॉक बनाती हूँ. अच्छा भाई, गुड हो गया. ये इनकी एक्टिविटी है. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. अच्छा, इन्होंने जान निसार का ओएसटी रिक्वेस्ट किया है. चलें ठीक है, जरूर प्ले कर देंगे आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. और अफशान सहर ने हमें जो मैसेज करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मेरे पास तुम हो का ओएसटी, वो भी हम प्ले कर देंगे. सो जनाब, आप लोगों ने हमें मैसेज करके बताना है कि बारिश के मौसम में आप लोगों की फेवरेट एक्टिविटी क्या है. आप लोगों ने facebook.com/rj.jasmine JZMINE पे जो है मैसेज करना है. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ जैसमिन अंडरस्कोर अहमद JZMINE_AHMED कैपिटल लेटर्स. एंड वहां पे भी अगर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं और पेज पे भी कर सकते हैं. सो मीनवाइल वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द रिक्वेस्ट ऑफ अफशा. दिस इज द ओएसटी ऑफ मेरे पास तुम हो. मिलते हैं इस गाने के बाद.

Alrighty, everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड facebook.com/rj.jasmine पे आप लोग बिल्कुल हमें मैसेजेस कर रहे हैं. अफशान ने हमें मैसेज किया है, बारिश के मौसम में मैं अपने फेवरेट सॉन्ग सुनती हूँ. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज अफशान. हाँ, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि बारिश हो रही है, चलो यार सॉन्ग्स लगा लिए तेज आवाज में, ये ड्राइव पे निकल गए. अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट. एंड ओके, शाहिद पवार ने हमें मैसेज किया है, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. उन्होंने लिखा है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. ओके, सो 3:04 हो गए हैं, 4 बजे तक हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं. मैसेजेस करते रहिए पेज पे, विच इज facebook.com/rj.jasmine JZMINE. ओके, सो राइट नाउ वी आर मूविंग ऑन टूवर्ड्स अनदर ट्रैक. द ट्रैक इज गोइंग टू बी जान निसार OST. मिलते हैं इस गाने के बाद, हमारे साथ रहेगा.

0: Alrighty, everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan and facebook.com/rjasminebay. आप हमें बिल्कुल मैसेजेस कर रहे हैं. शाहिद पवर ने हमें मैसेज किया है एंड रिक्वेस्ट किया है शफकत अमानत अली का सॉन्ग प्ले कर दीजिए, आंखों के सागर. ठीक है, बिल्कुल, हम पाकिस्तानी सॉन्ग्स जो हैं वो उसकी रिक्वेस्ट ले रहे हैं और उसी सॉन्ग्स जो हैं वो लगा रहे हैं. सो आप लोग कोई भी पाकिस्तानी ट्रैक उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे पेज पर मैसेज करके. ठीक है शाहिद, हम आपका सॉन्ग जो है वो प्ले कर देंगे थोड़ी सी देर में. ओके, सो आज हम जो है फ्रूट्स के हवाले से बात करेंगे और जब जब शो होगा तो हम लोग एक फ्रूट जो है उसको पकड़ के खींच लेंगे एंड देन उसके बेनिफिट्स के हवाले से हम बात करेंगे. सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट एप्पल यानी सेब. एप्पल के हवाले से हम सब ने ये सुना है, इवन हम अपने बचपन से ये चीज सुनते आ रहे हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. ठीक है, ऑल्दो बहुत से लोग जो हैं उनका ये मानना होता है वो शौक से नहीं खाते हैं एप्पल, उनको नहीं पसंद होता, लेकिन क्योंकि इस बात में इतना 100% से भी ज्यादा अगर मैं बोलूं तो फैक्ट है दैट एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. सही है, यानी कि एक सेब रोजाना आपको रखे डॉक्टर से दूर. तो क्यों रखता है, क्या है इसमें ऐसी क्वालिटीज, क्या इसके फवायद हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे और फिर उसके बाद हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे. लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ सेब के फवायद आपको बताएं. सबसे पहले तो सेब जो है वो हार्ट हेल्थ यानी दिल की सेहत के हवाले से बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है हार्ट हेल्थ को यानी दिल की सेहत को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है. सही है, एंड दूसरा ये कि अगर आपको डाइजेशन का इशू है यानी आपका हाजमा जो है वो सही नहीं है, सेब जो है उस चीज में बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है. इसमें फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन को जो है वो इम्प्रूव करता है. अच्छा जी, अगर हम वेट मैनेजमेंट के हवाले से बात करें यानी जिनको वेट का इश्यू है वेट जिनका ज्यादा होता है तो उनके लिए एप्पल इस तरीके से फायदेमंद है कि एप्पल जो है वो आपकी भूख को एक मॉडरेट लेवल पे ले आता है. सही है, क्योंकि एप्पल काफी फिलिंग होता है तो वो देर तक जो है आपके पेट को फिल रखता है और एक तरीके से हेल्दी स्नैक है और आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती है. तो मतलब इस चीज में एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, वो इस तरीके से कि अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं और क्योंकि भूख ज्यादा लगती है, खाने के शौकीन हैं और स्नैक्स चाहिए होते हैं या हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाना है, एपेटाइट अच्छी है, तो आई गेस एप्पल इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर बॉन एपेटीट. वो इस वजह से क्योंकि ये आपको फिलिंग एक एक फुल फीलिंग देगा कि आपका पेट फुल है, आपको नहीं भूख लग रही है और आपने एक न्यूट्रिशियस वाली चीज खाई है, सो हो गए एक तीर से दो शिकार. अभी आपको कुछ और फवायद भी बताएंगे एप्पल के यानी कि सेब के. मिलेंगे आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा. facebook.com/rj.jasmine पे मैसेज करते रहिए.
1: PM. This time check is brought to you by Dr. General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7 365 FM 24/7 365.
7: Listeners tell us about FM 100.
8: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
9: I listen because it has a lot of the songs. It's often easy listening to for the work.
7: Number one music station. FM 100.
10: Minute music hours. All of today's hit music on FM 100.
11: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine. Genie in a radio.

Alrighty, so now welcome back, Aap Sun Rahe FM 100 Pakistan and facebook.com/rj.jasmine पे आप हमें बिल्कुल मैसेजेस कर रहे हैं. ओके, हमारे पास शाहिद पवर की रिक्वेस्ट आई थी. इन्होंने आंखों के सागर जो है वो रिक्वेस्ट किया था फ्यूजन का. सो इफ यू आर लिसनिंग, दिस ट्रैक इज फॉर यू. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: Radio.
1: Okay, so now welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड बिल्कुल आप लोग हमें facebook.com/rj.jasmine पे मैसेजेस कर रहे हैं. Alright, so हम लोग बात कर रहे थे एप्पल के हवाले से, द बेनिफिट्स ऑफ एप्पल यानी सेब के फवायद. सो मैंने अभी ब्रेक से पहले आपको बताया था और सॉन्ग से पहले भी कि एप्पल जो है वो वेट मैनेजमेंट में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है. वो इस तरीके से कि एप्पल जो है एक बड़ा हेल्दी स्नैक होता है. सो इफ समवन इज डाइटिंग और इफ समवन इज वेरी वेट कॉन्शियस या वो चाह रहे हैं कि उनका वेट जल्दी कम हो तो they can have apples like सुबह में ले लें और शाम के टाइम ले लें. सही है, यानी कि नाश्ते में और शाम के स्नैक के टाइम. तो ये आपको एक फिलिंग रखेगा और आपको इतनी ज्यादा भूख नहीं लगेगी, विच मीन्स कि जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप उल्टा सीधा खाने का यानी जंक फूड खाने का सोचोगे भी नहीं और आपका पेट भी भरा रहेगा और एक न्यूट्रिशियस चीज आप जो है वो खा रहे हैं जो कि आपके लिए एक हेल्दी चीज है. अच्छा जी, ब्लड शुगर को जो है सेब जो है बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल रखता है. क्योंकि एप्पल में फाइबर होता है तो वो इसमें बड़ा बेनिफिशियल होता है. और इम्यूनिटी के हवाले से बात करें तो एप्पल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी के नॉर्मल इम्यून फंक्शन को जो है वो सपोर्ट करते हैं और स्ट्रांग करते हैं. ओके, कुछ और फायदे भी आपको बताएंगे एप्पल के, कुछ मैसेजेस शामिल कर लेते हैं. ओके, अफशा ने हमें मैसेज किया है पेज पे और कहा है इस वीक मेरी भांजी की 8th बर्थडे है, प्लीज उसको विश कर दें रिजा फैसल के नेम से. ओके, अफशा आपकी भांजी को हम एडवांस हैप्पी बर्थडे विश करते हैं. रिजा फैसल उनका नाम है. रिजा फैसल में यू हैव मेनी मेनी मोर. गॉड ब्लेस यू, अल्लाह पाक आपको खुश रखे. आपकी 8वीं सालगिरह है, अच्छे से सेलिब्रेट करें. ठीक है अफशा, हमने आपकी भांजी को जो है वो विश कर दिया है. एंड हमारे पास अफजल का मैसेज आया था.

0: इजी पैसा लाया है शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
1: 100 FM। अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली

0: Bank, easy wala bank.
1: Vachika Haftima Lucky Draw Winner Sal Kotwa Rohila Kashif EV Bike Kateverdi Hane Tamabe Har Hafte Car EV Bike Sonaja Sika and Beshmar Inam Kate Sangota Bas Vachika Shampoo Ji Botal Ke Scratch Karyo and Dher Sara Inam Katyo Try all new Vachika Shampoo Nourishes Hair Naturally
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: 100 FM।
4: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

Alrighty, so now welcome back. आप सुन रहे हैं from 100 Pakistan and बिल्कुल facebook.com/arjun.jasmine पे आप हमें messages कर रहे हैं and okay. So हम लोग बात कर रहे थे apple के फवायद के हवाले से, यानी सेब के फवायद के हवाले से. So मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था इम्यूनिटी के हवाले से जो है वो सेब बहुत अच्छा होता है बिकॉज इट हैज विटामिन सी एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से. ओके, अगर स्किन के हवाले से बात करें तो उसमें एप्पल में जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी होते हैं जो स्किन को हेल्दी रखते हैं और उसमें इसका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. एंड इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रेशन, सो एप्पल में पानी की मकदार भी काफी होती है. सो इट्स रियली गुड फॉर हाइड्रेशन, फॉर स्किन हाइड्रेशन, फॉर बॉडी हाइड्रेशन. एंड इफ यू टॉक अबाउट डेंटल हेल्थ, यानी दांतों की सेहत के हवाले से बात करें तो एप्पल को चियो करने से आपके जो गम्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांग होते हैं एंड इट्स रियली गुड फॉर योर टीथ एंड वेरी हेल्दी फॉर योर गम्स एज वेल. सो ये कुछ फवायद थे जो सेब के हवाले से हमने आप लोगों के साथ शेयर किए. सो मीनवाइल अभी जा रहे हैं कुछ मैसेजेस की तरफ. रमशा ने हमें पेज पर मैसेज किया है एंड शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर द सॉन्ग कॉल्ड मेरी जिंदगी है तू का ओएसटी. ठीक है रमशा, अगर आप सुन रही हैं तो हम आपके लिए सॉन्ग प्ले कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम रह गया, इसके बाद हमारे पास एक ब्रेक का टाइम आएगा. सो रमशा, दिस ट्रैक इज फॉर यू. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: Genie in Radio. Radio.
1: Genie in Radio. Radio.

Alrighty, everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान एंड क्योंकि शो का टाइम जो है वो हमारे पास थोड़ा सा रह गया है, यानी कि 3:54 हो गए हैं. 3:54 ऑन द डायल राइट नाउ. चलिए जल्दी नाम शामिल कर लेते हैं. 3636 पर जो हमारे पास मैसेजेस आए हैं. ओके शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. नूर, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. Bisma, thank you so much for your message as well. Alrighty everyone, so thank you so much for all the tech senders out there. और जितने लोगों ने हमें messages किए, participate किए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे हम. 2 से 4 सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. facebook.com/rj.jasmine पे जो है वो आप अपना feedback दे सकते हैं, और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं. रखिएगा बहुत सारा ख्याल. टेक केयर्स एंड अल्लाह हाफिज़.

0: बाजी का हफ्ता वार लकी ड्रॉ विनर। सियालकोट तो रोहिला काशिफ ने ईवी बाइक जीती है। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबे लेके निकले हम, अमीन कहाना रुकना तुम, रोज रोज आगे।

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
3: मतलब
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
3: स्पेशल तो लग रही है.
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
6: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
0: And
7: Sarsabz Nitro Foss ko laga. Aur jeet ta ja.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

بہترین آواز آ رہی ہے، آپ ستر آواز آ رہی ہے.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।

0: वाला बैंक।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
2: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
4: Special तो लग रही है।
5: और price सिर्फ 64,49,000।
4: अब समझ आया इसे special edition क्यों कहते हैं? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition now available at Hyundai dealerships nationwide.
6: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाए सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है। अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से जैज V5 फैंटास्टिक पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे ₹1,000 का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, क्रेजी डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर Jazz Cash से 50% cashback और Hyundai Elantra जीतने का मौका
9: at shopping of 5,000 rupees
8: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
10: 100 FM.
11: Chum chum chum, kitabe leke nikle hum. Ami ne kaha na rukna tum. Roz roz aage badh rahe hum.

0: डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: And
8: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
6: And
9: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
10: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
11: हमने आप ना कुछ 3 बार मौत देखा।
12: टाइम से मनु ऐसे ही के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
13: फिर उन्होंने साड़ियाँ वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
10: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
14: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
10: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज्यारत को जाने वाले जायरीन भी कानूनी जराए इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है, और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधही और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नजर ये इकदामात जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
16: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: It's 6:50 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।

0: Bank, easy wala bank.
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशन्स ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37.
2: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.

0: मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
1: वाचिका हफ्तेवा लकी ड्रॉ विनर साल कोटवा रोहिला काशिफ ईवी बाइक कटेवर्ती हाने तवा बे हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोने जा सिक्का ऐ बेशुमार इनाम कटे सगो था। बस वाचिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करियो ऐ ढेर सारा इनाम कटियो। ट्राई ऑल न्यू वाचिका शैम्पू नर्शेस हेयर नेचुरली।
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
4: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
5: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
4: मतलब
5: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
4: Special to lag rahi hai.
5: Aur price sirf 64,49,000.
4: Ab samajh aaya ise special edition kyun kehte hain. Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
6: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
8: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।

0: विवा ला बैंक।
1: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ।
2: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
3: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैश बैक और Honda Elantra जीतने का मौका
4: at shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
5: 100 FM.
6: चम चम चम, किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

This is FM 100.

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
3: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: अपनी कमाई से अपने घर की ग्रोसरीज लेना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
5: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
6: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
5: मतलब?
6: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
5: स्पेशल तो लग रही है।
6: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
5: अब समझ आया, इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.

0: Drive Time with DJ Priscilla. FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by Phoenix Laga aur Bhool Ja,
1: Phoenix Laga aur Bhool Ja.
0: And
2: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
0: And
3: Sarsaps Nitro Force ko laga aur jeet taja.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
5: बाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर सियालकोट तो रोहिला काशिफ ने ईवी बाइक जीती है. हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनामात जीत सकदे हो. बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.

0: Bank, Easy Wala Bank.
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
2: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीते. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैट कैश है ना.
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ.
2: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
5: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ.
6: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें तो सवाबित लागू हैं.

0: 100 आपका अपना रेडियो स्टेशन।
1: It's 7:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट से जीती है रोहिला काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
4: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: Digital Bank, easy wala bank.
1: Majika Haftiva Lucky Draw Winner Sal Kotwa Rohila Kashif EV Bike Katevarti Ane Tamabe Har Hafte Car EV Bike Sona Jasika and Beshmare Nama Kate Sagota Bas Vatika Shampoo Ji Botal Ke Scratch Karo and Dher Sara Inama Katyo Try all new Vatika Shampoo Nourishes Hair Naturally
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: जब तमाम बिल एक जगह पे हो जाए तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
6: 100 FM। लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: ईजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और ईजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. ईजी पैसा डिजिटल बैंक, ईजी वाला बैंक.
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ.
3: लाजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर. सियालकोट तो रोहिला काशिफ ने ईवी बाइक जीती है. हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनाम जीत सकते हो. बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो. ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली.
1: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रूपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का? अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.

0: Digital Bank, Easy Wala Bank.
1: Easy Paisa laya shandar offer. Abhi service se naye shoes khareede aur Easy Paisa QR se payment karke 25% cashback hasil kare. Ye offer mulk bhar ke tamam service stores par dastiyab hai. Aaj hi shopping kare aur cashback ka fayda uthaye. Easy Paisa Digital Bank, Easy Wala Bank.
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
5: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं।

0: मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
2: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
0: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
1: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
0: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
1: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
2: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइन जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे, तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मुहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मुहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
5: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: FM 24/7/365 FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
3: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
4: FM 24/7 365. FM 100.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
2: जैज कैश के साथ आओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
3: PDCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPDCL app download karke subscribe karein.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सियालकोट से जीती है रोहिरा काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू हैं।
5: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों के इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
9: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
10: हमारी जिम्मेदारी है।
11: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: FM247365 FM247365.
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
2: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैज कैश है ना।
1: वाचिका हफ्तेवार लकी ड्रॉ विनर साल कोटवा रोहिला काशिफ ईवी बाइक कटे वर्दी हाने तवा बे हर हफ्ते कार ईवी बाइक सोने जा सिक्का ए बेशुमार इनाम कटे संगो था। बस वाचिका शैम्पू जी बोतल के स्क्रैच करियो ए ढेर सारा इनाम कटियो। ट्राई ऑल न्यू वाचिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली।
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली गैस पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
3: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: PDCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000, free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye, 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPDCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hai.
6: 100 FM.
7: Chum chum chum. किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. लेट नाइट अपने पैसों से घर पर खाना ऑर्डर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू हैं।
2: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम कीजिए।
5: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
4: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूखी से متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
6: FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 10 PM.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: facebook.com/fm247365
3: FM 100 31 saal
4: FM 100 aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
3: Assalamu alaikum Pakistan.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: माजी का हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर सियालकोट तो रोहिला काशिफ ने ईवी बाइक जीती है। हुन तुसी भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनाम जीत सकते हो। बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
3: 100 FM।
4: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
5: FM 24/7/365 FM 24/7/365

पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फूट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहतरीन इस्तेमाल। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार करना। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स ANL वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान में सरगर्म नजर आती है, ताकि हमारे नौजवानों की हिफाजत और उनको बाइख्तियार बनाया जा सके। ANF ये जंग मुसलसल लड़ रही है। मोहल्लों में सड़कों पर

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकिम। आइए इस खतरे के खिलाफ मुत्तहिद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 247365

0: listeners tell us about FM 100.
1: I love everything about it. I really do. I love the music. They play a lot of songs that appeal to me.
2: I listen because it has a lot of the songs that's often easy listening to for the work. It's
0: number one music station. FM 100. 100. 100.
3: Friends, as I told you,
4: hello.
3: As I told you, these guests are here. They're in a rush. Unko badi jaldi wapas jaane ki. Unka home ministry se phone aaya ki foreign grocery leke pahunch jao, nahi tum log thehrit nahi hai. To ab Nadeem saab jo na wo taiyari kar rahe hain. Unke paas jo tracks hain gaane ke karaoke ke. Wo to awaaz gaayenge aapko to dono cheeze sunai de rahi hongi. Magar Facebook par se unki awaaz hi aayegi. Theek hai na? Aur mere khayal mein jab tak unki taiyari mukammal hoti hai, jab tak ek mera jo ek bilkul latest, very very latest song hai. जो मैंने किया हुआ है और वीडियो भी मैंने किया हुआ है वो फेसबुक पर है आप देख सकते हैं जी गया हूं यानी कि मैं जिंदगी में ऐसी ऐसी मरहलों से बच बच के निकला हूं ऐसे ऐसे मरहलों से गुजर चुका हूं जो आज मैं बैठ के सुनता हूं तो मुझे लगता कि मैं उससे गुजर सकता ही न था मगर यह कि मैं तो जी गया हूं जिनको कभी न जी सकता था वो भी लम्हे जी गया हूं अभी एक छोटा सा ये ब्रेक आया हुआ है ब्रेक को चलाएंगे उसके बाद आप लोगों से जारी रखेंगे सम्मान
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है अब जंग मैदाने जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है वो ढूंढता है कमजोर लम्हे बेरोजगार नौजवान जरूरतमंद खानदान फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब बड़ी नौकरी तेज दौलत बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं जिनसे बदमनी खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है आपकी तस्वीरें पहचान फोन सब कुछ खतरे में डाल देता है तो याद रखिए किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए कोई मशकूक चीज कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए क्योंकि हर लफ्ज हर क्लिक हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा फैसला आपके हाथ में है
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया
7: Like us on facebook.com/fm247365
8: fm247365
9: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahman, Sun Across the nation.
10: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100.
3: 100. All right, yeah, welcome back, my dear friends. अभी थोड़ी तैयारी में टाइम है.

0: Oh, very good, very nice, very nice, very nice, very nice.
1: वो ऐसा लग रहा था साथ में कोई सपोर्ट करने का है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम खवातीन हजरत, आपने ये गाना सुना इतनी जल्दी में, मैं भी पाकिस्तान में दिल दिल पाकिस्तान गाया और बहुत अच्छा गया, उनकी बेटी ने उसको पिक्चराइज भी कर लिया।
2: नदीम इटालियन
1: यार, इनका नाम है नदीम इटालियन। इटली से वो आए हैं, पता नहीं छुप छुपा के आए हैं, क्यों आए चुप छुपा के चले। नहीं नहीं, मैं दोस्त, मेरे दोस्त हैं बिल्कुल, ही इज हियर विद हिज फैमिली और हम लोग फैमिली फ्रेंड।
3: हमारी बेटी बड़ी हो रही थी इसलिए हम छोड़ के आ गए।
1: अच्छा, हाँ बेटी, ओके। अब बेटी से कुछ बातें करें
3: करें करें,
1: ओके राइट, ओके।
3: जो अच्छा लगे बता।
1: शिवा, आप तो उर्दू भी जानती हैं, वो अच्छा अच्छा ना
4: जी।
1: तो आप बताइए, आप कब यहाँ आए, पाकिस्तान कब आए, कब से आए? 12 साल पहले?
4: नहीं नहीं, 5 साल पहले।
1: सिर्फ 5 साल पहले
4: जी।
1: 5 साल पहले तो कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाना यहाँ। तो आप
2: पैदा वहीं हुई हैं?
1: पैदा हुई हुई हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, पैदा वहाँ हुई है और यहाँ आ गई हैं। क्यों आ गई?
4: हमें उधर का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था।
1: वहाँ ये यहाँ?
4: वहाँ का।
1: अच्छा, वहाँ का क्या माहौल होगा? वहाँ का माहौल आपको जब सोसाइटी जा रहे, कॉमन कॉमन है सोसाइटी है। अरे वो अलग चीजें, हम अलग चीजें, बहुत फर्क है आपस में। तो आपको यहाँ की अच्छा लगा? आप यहाँ की तालीम भी आपको यहीं से के लिए आपने, सही ना
4: जी?
1: अच्छा, कहाँ तक पढ़ा आपने? अभी तो खैर मुझे लगा आप ये फादर ने कहा कि आप बड़ा कुछ कर रही हैं, अपने मैट्रिक वगैरह भी कर लिया, कंप्यूटर में चले गए हैं। अच्छा, तो आपका इरादा क्या है, आप AI में काम करेंगी ज्यादा?
4: जी, IT में अभी साइबर सिक्योरिटी का सोचा है या फिर AI।
1: अच्छा, साइबर सिक्योरिटी या AI। और AI बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, पता है AI के बाद अब जैसा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, अब सिंथेटिकल इंटेलिजेंस भी आ रही है, सब बहुत कुछ आ रहा है, इसमें बहुत काम है। और वो जो आप बात कर रहे हैं ना सिक्योरिटी, क्या है वो?
4: साइबर सिक्योरिटी।
1: साइबर सिक्योरिटी वो बड़ा मजेदार काम है, बहुत सारे लोगों को आप पकड़ेंगे है, सजा देंगे उनको बिल्कुल। हाँ देखे ना, अभी हमारे फोन है, मैंने यू फोन वाले भी सुन रहे हैं ना, हम बार बार अपने फोन में बैलेंस डालते हैं वो गायब हो जाता है, बार बार बैलेंस डालते हैं वो गायब हो जाता है, कहाँ जाता है भाई?
2: मेरा भी यही मसला है।
1: और ये उनका, नदीम साहब का भी ये मसला है, यू फोन साहिबान जो है ना, प्लीज हमारे हेल्प कीजिए। 1200 का भी डाला, 1000 का मैंने शाम को डाला था, गायब हो गया। अब मैं जस्ट सर्वाइविंग ऑन द इंटरनेट। आपका जो यू फोन है वो हमारे मतलब काम नहीं आ रहा, खर्चे हो रहे ज्यादा। अच्छा, बात यह है कि अब फादर हैं उनके, मेरे ख्याल में और गाने नहीं गा सकते,
2: बगैर म्यूजिक के गा सकते,
1: बगैर म्यूजिक के गा रहा थोड़ा सा
2: जब कोई प्यार से बुलाए।
1: हाँ, इनका गाना ही अच्छा लगे, जब कोई प्यार से बुलाएगा तो बड़ा मार खाएगा। जी अच्छा, एक मिनट, चेक आ गया, टाइम चेक आ गया, ये टाइम मतलब ये कमर्शियल चेक आ
5: गया। सियालकोट से जीती है रोहिला काशिफ ईवी बाइक। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
6: facebook.com/fm247365
7: fm247365 Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim, Khan,
8: Multan, Abbottabad, Gujarat,
7: across the nation,
8: this is FM 100 FM
1: ٹیسٹ ناؤ، یہ بڑا مشکل کام ہے بغیر میوزک کے گانا، چونکہ ٹریک چل رہا کچھ نہیں چل رہے، تو آپ آدھا گانا گا دیں، جب کوئی پیار سے بلائے گا تو پھر کیا اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے آپ؟
3: تم کو ایک شخص یاد آئے گا.
1: ہاں اچھا اچھا جی فرمائیے.
3: جب کوئی پیار سے بلائے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا،

0: अरे वेरी गुड वेरी गुड, बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ा हौसला है, और इसी से पता लगता है कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट है या नहीं है। एक बगैर म्यूजिक के भी गा दिया, म्यूजिक के साथ भी गाते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आज इनके पास इतना टाइम नहीं है। अगली दफा जब आप आएंगे बड़ा प्रिपेयर होकर आएंगे, आप अभी जाके फौरन फौरन जो है ना ग्रोसरी जितना खरीदना है वो ले लें और जाके होम मिनिस्ट्री को
1: मेरी तरफ से
0: जी जी
1: थैंक यू लिसनर्स को,
0: उनकी तरफ से आप लिसनर्स को बहुत बहुत शुक्रिया आपने गाना सुना। इसी तरह FM 100 का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने गाने दिया, गाने का मौका दिया, एंड इसी तरह शिफा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, वेरी गुड, ओके जी।

think आपने गाना सुना, ये आरिफ लोहार का सॉन्ग था जिसके बेटे ने वो बनाया गाना, और बड़ा अच्छा हसीन गाना था, बड़ा मजा आया।

अच्छा, इसके साथ ही एक सॉन्ग है बड़ा अच्छा, आधे अधूरे, या ये आशिर वजाहत, इनका सॉन्ग बड़ा अच्छा लग रहा है। आई लाइक दिस काइंड ऑफ

0: bacana, velho, que o podcast é bom, o GuiaCast.
1: Bandugia. Number 3. आपने सुना होगा आज हमारे साथ काफी प्रॉब्लम हुआ है कि देखिए टेलीफोन एक बहुत जरूरी चीज है, इंटरनेट तो हर जगह नहीं होता ना, वाईफाई से हम कब तक काम लेंगे, व्हाट्सएप उस वक्त मैसेज जाता है रिसीव होता है कि अगला जो है ना वो ऑनलाइन हो या डेटा उसने खोला हो, वरना बिल्कुल मासूर हो जाता है। और ये फोन मुझे याद नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, ये दो तीन दिन से ये हो रहा है। मैं 1000 रुपए का डालता हूँ, 1200 का डालता हूँ। पहले तो मैं गोल्ड डील होती थी गोल्डन, 1700 का वॉट डालता था, अब वो बिल्कुल क्लोज हो चुका है। और इसमें जो है ना ये समझ में नहीं आता, अभी तक मैं 2200 रुपए खर्च कर चुका हूँ और वो गायब हो चुका है। ये तो दिस इज लाइफ, यू हैव टू बेयर इट, ये लाइफ है, ये हर लाइफ में हर चीज होती है और खासतौर पर हमारे मुल्क में बहुत सारी चीजें। इट्स अ कंट्री ऑफ हैपनिंग। ये देखे आगा जी हैं, बहुत जबरदस्त उन्होंने सॉन्ग बनाया, ये है आज भी आगाली कहते हैं कलाकार सीजन, कलाकार सीजन आगे क्या है भाई, सीजन नंबर 1 कलाकार होंगे।

and gentlemen. thank you for being connected with me. बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का प्रोग्राम सुनने का, मेरा साथ देने का. आजकल दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, मतलब न्यूज देखते हैं हम पागल हो जाते हैं, इतना कुछ हो रहा है और इंसान मरा जा रहा है. और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि बच्चे मर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, कितने कितने हजारों बच्चों को वो मार रहे हैं, जेनोसाइड ये हो रहा है. अजीब, मगर दुनिया बेहिश बैठी हुई है, कोई इस पे एक्शन नहीं लिए जा रहा है. समझ में नहीं आली बात है. इसलिए कुछ जोक करने को भी मूड नहीं करता यार, ऐसे हालात चल रहे, ऊपर से हम जोक करें. गाना सुन के हम अपने आपको सुकून देते हैं.

0: एक छोटी सी एक छोटा सा वाक्य। पठान डॉक्टर के पास गया, कहा मुझे मेरे वजन बढ़ गए। खान साहब हाँ क्या बोलते? तुम रोजाना 10 किलोमीटर चला करो। एक साल के बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया और कहा
1: डॉक्टर साहब वजन तो कम हो गया मगर हम अफगानिस्तान के साहिल पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान का हाँ सरहद पर पहुंच गए। अभी इधर रुके या आगे रूस निकल जाऊं?
0: एक बात इनके जहन में आ जाए तो वो उसको कर छोड़ते हैं। अब एक पठान को रोजे में बहुत प्यास लग रही थी, पास बैठा एक आदमी पानी पी रहा था। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला अल्लाह
1: अगर मैं इसे जन्नत में देखा तो इसका खैर नहीं है।
0: जनाब ये क्या कर सकते हैं कि टाइम में चक अब आ चुका है और 12 बजने वाले हैं। बारह बजने वाले यानी के वेडनेसडे इज गोइंग टू टर्न इनटू थर्सडे, मतलब आज का दिन भी चेंज हो जाएगा और आज का डेट भी चेंज हो जाएगा, 19 से 20 हो जाएगा जी।

0: अरे इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में उड़ नहीं सकते तो भाग दो, उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलते रहो, चल नहीं सकते तो रेंगो, जिंदगी में कभी रुकना नहीं। मगर बच्चा कहता है
1: वो तो सब ठीक है मगर जाना कहाँ है।
0: ये बात सही, किधर जाना है भाई, इतनी बातें आपने बोल दी कि उड़ नहीं सकते तो भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, मगर जाना कहाँ है। ये बातें अपनी जगह चलती रहेंगी और हमारे गाने भी चलते रहेंगे। ये जो गाना मैं आपको दे रहा हूँ अभी, आबिदा परवीन और आका गाने गाया है और जबरदस्त संगीत सुनेगा।

0: location for maximum music.
1: Alright, my dear friends, बहुत बहुत शुक्रिया आप अब आप तक जो जी हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं उनका शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. अरे गर्मी आ रही थी, सर्दी जा रही थी, यार दोनों में टक्कर हो गई. अब दोनों को याद ही नहीं रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था. बात ये जनाब, यहाँ बैठे हैं बहुत ठंडे, बहुत एयर कंडीशन इज रियली वर्किंग और टेम्परेचर इज आउट लाइक 20 डिग्री सेंटीग्रेड. मुझे तो सर्दी नहीं लग रही है, मगर ये कि हम कुछ मेरे गेस्ट आते हैं उनको बड़ी सर्दी लगती है. स्पेशली हमारे सामने इंजीनियर हैं सतार साहब, उनको इतनी ठंड लगती है पता नहीं क्यों. एनीवेज लेट्स गो फर्दर एंड आगे चलें और गाने सुनें और

0: station for maximum music.
1: मैं इस तरह जो मिक्स करके मैं आपको वेस्टर्न ईस्टर्न सब कुछ सुना रहा हूँ। आज आपका मैं टेस्ट ले रहा हूँ कि आपको पसंद क्या आता है। वो एडमिशन कराना बड़ा मुश्किल है। ये बच्चे भी सामने बैठे हैं, इनको पता है इसके फादर ने क्या क्या जतन किए इनको एडमिशन दिलाने के लिए। 70,000 तो उन्होंने डोनेशन ले लिया और चिंटू सीख के आया क्या, चूहे से अनार और बड़े से बड़ा आम और भाई साहब ये एक 35 रुपए में हमें अनार और 35,000 में हमें आम पड़ा था। ये बड़ी इसके कहती इसकी भैंस की आंख। ये एक्चुअली स्कूल वाले न चिंटू को भांप गए थे और हमारा छोटू उसे उल्लू बना के और 90,000 रुपए का टोपा पहना दिया। और इसकी भैंसी आंख, इन लोगों ने अब तो सोच लिया है कि चिंटू का डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे और वो भी मुफ्त में, जो कि बहुत मुश्किल है। ये पता कि आजकल एडमिशन्स बहुत मुश्किल से होते हैं और स्कूल में जहां आप जाते हैं मिशनरी जो स्कूल्स होते हैं इसमें डोनेशन नाम पे बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं और लोग जो है बड़े खुशी खुशी लूट रहे होते हैं और ड्राइंग रूम में बैठकर तारीफ करते हैं, यू नो आई जस्ट पेड 50 मिलियन। अच्छा दिया होगा 50,000 मगर कहते 50 बिलियन हमें डोनेशन दिया है। भाई ऐसा क्यों करते हैं आखिर, बच्चों में कितना डिफरेंस आता है ना। बच्चे एक दूसरे से वो अपने आप को कंपेयर करते हैं, देखो हम इतने पैसे वाले हैं, हम गाड़ी में आते हैं, हमारी गाड़ी में गार्ड्स हैं, ये है वो है। और साथ में एक बच्चा आता है मोटर बाइक पे, उसके बाप लाकर उसको छोड़ देता है स्कूल में। ये तजाद है, इस तजाद को खत्म होना चाहिए। और तकरीर खत्म, आगे एक और सॉन्ग जो है ये जरा सुनिएगा, आपको मजा ही आ जाएगा, देख लेना। अफगान जिलेबी

साथ थोड़ी बातें भी करता चलूं, और बातें ये हैं कि बातें ये हैं कि आपको पता है कि हम खुद को सही साबित करने के लिए कितने लोगों को गलत साबित कर देते हैं। पता है आपको, ये बात तो पता है ना, कुछ नहीं मिलेगा इससे, क्या ही कर लेंगे आप खुद को बार बार बार सही साबित करके। कोई पैसा मिल जाएगा या कोई अवार्ड मिल जाएगा, अगर सही है तो सामने खुद आ जाएगा, साबित क्या करना है इससे। लेकिन इस अमल में आपको पता है कि आप बहुत सारे लोगों को गलत साबित कर चुके होते हैं, और अगर हमारा इखलाक सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों के लिए या चंद बड़े लोगों के लिए अच्छा है तो हम खुश अखलाक नहीं बल्कि हम नौका परस्त हैं। अगर अपने आप को, अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप जिंदा हैं, और अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप एक अजीम इंसान हैं। जब हमें बोलना नहीं आता था तो हमारी माँ हमें बोले बिना हमारी बात को समझ लेती थी, और हम अब अक्सर कहते हैं माँ जी आपको क्या पता, आपको नहीं पता, आप नहीं समझेंगे। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और अब जनाब एक सॉन्ग और है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये है हालांकि ये अली अजमत का सॉन्ग है, कुछ लोग भी पसंद भी बहुत करते हैं इनको, क्यों नहीं, गुड आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, कोई ना कोई उसमें बहुत बड़ी बात होती जरूर है। और एक साहब कहते हैं कि शेखी भाई स्टे अलाइव प्ले कर दे प्लीज। साहिबजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, और ये सॉन्ग जो मैं अगली दफा प्लीज प्ले कर दूंगा, चूंकि अब टाइम नहीं रहा, मेरी जाने का टाइम होने लगा है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया।

FM 100's time check. It's 1 a.m.

वेलकम बैक गाएंगे भाई सुने हो गाना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है और अरबिक गाना चला है तो इस्माइल भाई आपको हम याद कर रहे हैं, इस्माइल भाई को डेडिकेट करेंगे नुमाइश वाले हैं जी ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस के जान है और सभा का मैसेज हो गया था, अदीला मेरी बहन का मैसेज हो गया था, अरुजा मेहमान का मैसेज हो गया था और अदीला फिर कह रही है प्यारे भाई ओके टेक शो आपकी रूहे मन को सलाम और सॉन्ग हाय हाय। अच्छा जब रूहे मन कहा जाता है ना इसको तो फिर दिल करता है कि कोई ऐसा गाना हो यार जबरदस्त जिया है जी जिसकी शायरी बड़ी अच्छी हो तो अदीला आपकी जानिब से जरूर डेडिकेट करेंगे पक्का पक्का रूहे मन को और अल्लाह ताला समी की जॉब पहले से भी बेहतर जगह लगे आमीन सुम आमीन। ये हमारे शहजादे साहिबजादा कह रहे हैं और साहिबजादा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका और दुआ सब करें भाई दुआ सब करें हैं जी थे हैं जी। मुश्क आ गई हैं और मुश्क क्या कह रही हैं, मुश्क भी बहुत कुछ कह रही हैं। अरे वाह भाई वाह ये क्या क्या भेज दिया भाई जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम हैंडसम क्या हाल है, कल का शो बहुत अच्छा था मुझे पसंद आया था और बहुत बहुत शुक्रिया चाचू को चाची को महनूर को सवा गुल को हिना गुल को सलीम भाई अमीन भाई और तमाम भाइयों के लिए बेस्ट विशेज बहुत बहुत शुक्रिया। और कहती हैं कि आओ मिलकर दर्द बांटते हैं, तुम दरवाजे में उंगली देना फिर मिलकर चीख मारेंगे और इनका एक और चुटकुला है, मेरा ख्याल चुटकुला ही होगा कि अगर कोई आपसे कहे मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं तो मौका जाया ना करें और मांग लें यकीन करें ये सिर्फ चूना ही है, पाकिस्तानी अवाम अपने चार्जर किसी को नहीं देती, जान तो बहुत दूर की बात है। ये बात भी बिल्कुल सही कही यार, जान कौन देगा लेकिन मुश्क देने वाले दे देते हैं, कुछ लोग जान से जाते हैं और जिंदा होते हैं। जरीन नूर नौरीन आंटी और संजू के लिए भी बेस्ट विशेस और फरहीन सिस के लिए आपकी प्लेलिस्ट का A1 सॉन्ग हो जाए थैंक्स हैंडसम भाई। वो दुबई वाली जो हैं वो आएंगी तो फिर उनको डेडिकेट करेंगे ना, पता नहीं वो सुन भी रही हैं कि नहीं सुन रही, जब वो आती हैं तो फिर हम उनको ट्रैक डेडिकेट कर देंगे आपकी जानिब से। हैंडसम आमद हुई है मेरी नहीं किसी पगली के, कुछ इश्क अधूरा था कुछ वादे अधूरे थे, जो तुम समझ ना सके वो जज्बात जो गहरे थे। वाह वाह क्या सच्चा इश्क हुआ है हैंडसम जबरदस्त, वाह भाई वाह क्या मैसेज है। और राज शब ने इनको ट्रैक पसंद आया। समी दूल्हा भाई आप फिक्र ना करें, अल्लाह पाक ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है बेशक, और समी हम सब तुम्हारे साथ हैं, यानी कि समझ रहे ना। हाँ जी और आज तुम्हारे लिए 4-5 गाने डेडिकेट होंगे डोंट वरी। अरे हमारे इरफान मेमन भी आ गए हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। यार ये मासूम से गरीब से बच्चे वाला नहीं आया, मजा नहीं आया। और कह रही है अरुषा मेमन थैंक्स दुआ के लिए, अम्मी के घर आई हुई हैं तबीयत की वजह से अब कुछ बेहतर है भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे सब कजन्स के लिए ये सॉन्ग यहाँ सब अच्छा के लिए सॉन्ग यहाँ सब हैं, अम्मी के घर आपकी टीचर सलाम बोल रही है मानूर करो आ जाए जी दी रहो मुस्कुराती रहो। तुम्हारी मिठाई नहीं पहुंची अभी तक भाई, मंगनी शंगनी कर ली है शागिर्दों को मिठाई नहीं, वाह भाई वाह। इरफान भाई पिज्जा लाने गए हैं कजन के लिए ये अच्छी बात है, नाइस लाइव आइएगा भाई। आज मुश्किल है भाई बहुत मुश्किल है आज। अच्छा जी मेरे कजन को आपको देखना है हाय सो स्वीट फिर कभी सही। और सजाद अली का सॉन्ग जल्दी क्योंकि फिर सब चली जाएंगी मेरे कजन्स, डोंट वरी जरूर चलेगा। और आप अपनी कजन्स को बोलें बल्कि वो पिज्जा आ जाए तो फिर फौरन मुझे मैसेज करके बताओ कि पिज्जा आ गया है तो नदीम भाई चला दीजिए तो हम उसी वक्त आपका गाना चला देंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। चले इसी बात पर हम आपको लेके जाते हैं एक और बहुत प्यारे से ट्रैक की जानिब और ये ट्रैक आ...
हाँ जनाब, ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं जरीन नूर की जानिब से संजू को। गाना बहुत अच्छा है, यकीन मानो आपको अच्छा लगेगा।

वेलकम बैक आएंगे भाई, अब मैं रांझा तू मेरी हीर हीर हीर हीर। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैसेजेस आपके आ रहे हैं जनाब भरपूर तरीके से, लेकिन कुछ बात कर लेते हैं नींद के हवाले से। उस पर किसी ने अभी तक तवज्जो नहीं दी और ना ही मुझे कोई मैसेज किया है, तो बताइए कि आप कितने घंटे सोते हैं 24 घंटों में, ये जरूर बताइएगा। आयशा मेमन मेरी बहना कह रही हैं कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अरुसा आप ही थोड़ा एफएम पर भी पार्सल कर दें और मुझे भी हैदराबाद में भाई सज्जाद अली का सॉन्ग। आयशा मेमन ये क्या पार्सल करवा रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रही, और वो भी अरुसा भी हैं भाई। वो गाना तो खैर वो हम चलाएंगे ही, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। संजू कहती हैं समी ओह समी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह सब खैर होगा, ये संजू ने कहा है। समी तुम्हारे लिए स्पेशल। और कहती हैं कि एक दोस्त की बातों ने बहुत सी उलझने पैदा कर दी हैं, दिल उदास कर दिया है, कोई मुझे धीमे सुरों वाला गीत शामिल हो सकता है? बिल्कुल होगा जी, जबरदस्त होगा। वो अभी अदीला ने जो कहा है ना रूहे मन वाला, तो हम रूहे मन को करेंगे ना ट्रैक डेडिकेट, तो फिर वो बड़ा जबरदस्त सा, यानी कि समझ रही है ना आप, हैं जी ते हैं जी। और कहती है कि मेरी तरफ से 100 की फैमिली लाला सबा गुल हिना गुल महानूर सीमा साइम के लिए खुलूस और मोहब्बत के नजराने पेश कर रही हूँ, पहुंचा दीजिए। पहुंच गए जनाब, जो जो सुन रहे हैं उनको पहुंच गए, यानी कि समझ रही है ना। और आगे बढ़ते हैं, और हमारे नवान भाई बल्दिया से आ गए भाई, कह रहे अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है नवान भाई, आप सुनाए कैसे हैं, वालदा कैसी हैं, जरूर बताइएगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और अमीन कह रहे हैं कि मुश्क बहना वालेकुम अस्सलाम, और दर्द बांटता फिरता है जब रखो, और यार ये क्या लिखा हुआ यार, मेरा समझ में नहीं आ रहा है यार, फिर हिज्जे करना पड़ेगा। तो अमीन भाई आपके मैसेज के हिज्जे करते हैं अभी हम। और शौहर ने बीवी से कहा मुझसे कोई आज मीठी बात करो, मुझे सुकून आ जाए। बीवी कहने लगी काश तुम लड्डू होते, टुकड़े करके परिंदों को खिला देती। अरे फ्रॉम SMS शाह, भाई शाह साहब कैसे हैं आप, आज बेगम ने इजाजत दे दी मैसेज करने की। ए भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कोई सलाम दुआ नहीं यार, इतने सालों के बाद मैसेज किया, ये वही SMS शाह है या कोई और है, यानी कि समझ रहे हैं ना। हमारे पुराने बहुत पुराने लिसनर SMS शाह वही वाले हैं या कोई और है, जरूर बताइएगा। और जनाब आगे बढ़ते हैं, समी कहते हैं इस अरबिक सॉन्ग से इस्माइल भाई याद आ गए, आए हाय क्या बात है, चले हमें आपको और याद दिलाते हैं, शुक्रिया साहिबजादा भाई। और समी दुला भाई, दुला भाई तो हो ना यार। मुश्क ने कहा था। और नदीम भाई इस रबीउल अव्वल पे मेरा निकाह था, पर बहन की तबीयत की वजह से कैंसिल हो गया, पिछले साल दिसंबर में निकाह की बात हुई थी तब भी कैंसिल हो गया था। नदीम भाई शादी में आना आप और गुफरान भाई, आज हॉल बुक करवा के आया हूँ। अच्छा समी एक काम जरूर करना, आपको ऐसे ही मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है, एक तो सदका करो इस नियत से, ठीक है, चाहे वो 10 रुपए का सदका हो, यानी कि समझ रहे हो ना, चाहे 10 रुपए का सदका हो लेकिन करो। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ रोड्स पर तुमने एक चीज देखी होगी, और वो चीज ये है कि रोड के किनारे पे कोई ना कोई एक भाई बैठा होता है, जिसने अपने सामने जो है 10-15 बोरियां रखी होती, और फुटपाथ पर जो है लोग कबूतरों को दाना फेंक रहे होते हैं। अब उसमें दालें भी होती हैं, बाजरा भी होता है, बहुत सारी चीज होती है,
तो चाहे 10 रुपए का आप उनसे वो खरीदें, आजकल तो खैर 10 रुपए की नहीं मिलती, 20 रुपए कम से कम, तो वो आप अपने हाथ से परिंदों को जो है वो बाजरा वाजरा भी खिलाएं। ये सवाब का भी काम है और अल्लाह ताला बेहतरी लाएगा। ये मैं ऐसे ही मशवरा दे रहा हूं, और ये सिर्फ समी को नहीं, आप सबको ये मशवरा है। और आगे बढ़ते हैं गाने की जानिब, और अभी हम जिस गाने की जानिब जा रहे हैं, ये गाला जो है बहुत जबरदस्त है, और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं जनाब इरफान मेमन, आयशा मेमन, मानूर मेमन, रूसा मेमन, जितनी भी मेमन सिस्टर, मेमन कजन्स जो हैं वो सुन रही हैं इरफान मेमन की, उन सबको, और उसके साथ साथ

0: सलीम मेमन
1: और मेमन जितने भी है सबको ये गाना डेडिकेट हो रहा है भाई।
0: और आवाज है सज्जाद अली की, येलो भड़ो।

वेलकम बैक। है चिड़िया ये उड़ जाएगी भाई। मैंने बोला जरा माहौल को गर्म किया जाए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रैक्स पसंद आए होंगे। मैसेजेस कर रहे हैं आपके चॉइस पे, आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। आहा, डैशिंग सलाम टू ऑल मोहल्लाज। ये आ गई है बेबे, यानी कि कायनात अरसलान आ चुकी है और कहीं मैं भी आ गई हूँ, थोड़ी देर के लिए हूँ, आई हूँ। और जी वेलकम कहेंगे आपको, सॉन्ग आपको डेडिकेट बिल्कुल होगा, 100% होगा, डोंट वरी। और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस के जाने। थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी और देख लें कि कौन कौन से मैसेज हमने पढ़ दिए हैं और कौन कौन से, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। ओहो, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं आज। जिंदगी साथ है के कैसे हैं, कल का शो बहुत जबरदस्त था, आपकी निगाहें बोलती हैं, शरारत भरी आपकी आवाज में, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने कहाँ देख लिया, यानी कि समझ रही है ना, हमें तो पता ही नहीं है कि आप जो है वो फेसबुक पर भी हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं और अमीन चार्ली कह रहे हैं, मुश सिस्टर को आतिफ का सॉन्ग तेरा मेरा जहां, ये कौन सा गाना है भाई, ये मेरे भाई कासिम सैफ का सॉन्ग है और वो डेडिकेट कर दीजिएगा। बिल्कुल करूंगा अमीन भाई, डोंट वरी। वो गाना हम ढूंढ रहे हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना हम। हाँ, और क्या है सॉन्ग, तेरा मेरा जहां। ओके ओके, अभी बस कुछ ही देर में, यानी कि समझ रहे हैं ना आप।

वेलकम बैक कहेंगे आंखें मिलाने वाले ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अमीन कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम नीली आंखों वाली समरीन जी, कहां गायब हो जाती हैं आप लोग। सलाम और बेबी सिस्टर, कैसी हैं आप? सॉन्ग बिल्कुल जनाब, आप बार बार बता रहे हैं तो पूरी कोशिश है कि आपका ये सॉन्ग जरूर चलाए। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा सुने हो, अब आपको जो मैं बात बताना चाह रहा था, हाय नींद के बारे में बता रहा था मैं आपको। और हमारे बहुत ही प्यारे से एक इंजीनियर हैं, आज वो भी आए हुए थे तो नींद के हवाले से ही उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था। और मैंने मेरे ख्याल कल के शो में एक मिसाल भी दी थी कि इंसान के जिस्म का जो उसकी एग्जांपल दी थी कि जिस्म को सुकून आराम कैसे मिलता है, इस हवाले से बात की थी। तो खैर नींद के हवाले से डॉक्टर्स आप लोगों को अक्सर ये बोलते हैं कि 6 से 7 घंटे यार सो जाया करो यार, 6 से 7 घंटे या 8 घंटे। और हम जो है वो कितने घंटे सोते हैं, ये सवाल भी मैंने किया, किसी ने इस पर ज्यादा गौर ही नहीं किया कि भाई क्या जरूरत है गौर करने की। भाई अच्छी सेहत और जिस्म की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जो है वो सोने का वक्त जो है वो मुकर्रर होना चाहिए। मुकर्रर कैसे होना चाहिए कि देखें, अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाया है, रात सोने के लिए दिन जागने के लिए। मगर आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे हमारे पूरे माशरे से ये सिलसिलेकार उलट होता जा रहा है। पहले जो है देर तक रात को देर तक जागना जो होता था उसको मायूब समझा जाता था, आवारा गर्दी में शुमार होता था कि जो लोग आवारा गर्द हैं, आवारा गर्द से मुराद ये है कि घरों से बाहर रहना, न काम न काज, दुश्मन के अनाज के, ऐसे बच्चे नौजवान और देर से जो घर पे भी जाग रहे हों उसको भी जो है अच्छा नहीं समझा जाता था किसी जमाने में। अब देर से जागने से मुराद क्या है, रात को 12 बजे तक जो जाग रहा होता था, 12 बजे के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद से मुराद के कोई 1 बजे या 2 बजे तक जाग रहा है तो ये बहुत मायूब समझा जाता था। और मैं अपने हवाले से आपको एक बात बताता हूं कि जाहिर है मैं आपको जो रेगुलर लिसनर्स हैं जो सालों से सुन रहे हैं उनको पता है कि मैं नाइट शोज ही करता हूं। तो नाइट शो करके जब मैं घर की तरफ रवाना होता था ना, मैं आज से लेकर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 साल पहले ले जाऊं, तो यकीन मानिए कि थोड़ा सा हल्का फुल्का सा खौफ तारी होता था। और खौफ तारी दो चीजों से होता था, एक तो सन्नाटे की वजह से ऑटोमेटिकली इंसान जो है ना वो खौफ तारी होता था, भाई हर तरफ गली बिल्कुल सन्नाटा, ना बंदा नजर आ रहा है ना बंदे की जात नजर आ रही है, ठीक है ना, तो कोई जिन कोई चुड़ैल कोई डकैत, एक तो ये खतरे ये रहते थे। और दूसरा कुत्ता ना आ जाए, भाई कुत्ते भी जो है ना रात को घूम रहे होते हैं आवारा कुत्ते, तो इन चीजों से डर लगता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता रौनकें ऐसे होने लगी कि अब रात को 3 बजे क्या 4 बजे भी अगर आप घर से बाहर निकल जाएं और रोड पर आ जाएं तो चाय वाले होटल भरे पड़े होते हैं। तो कहने का मकसद ये कि इस चीज को पहले मायूब समझा जाता था, मगर अब जो है इस चीज को आम, हर घर में ये चीज आम हो गई है, कोई मसला ही नहीं है, 2 बज गए 3 बज गए। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी है कि सुबह जो उठना है वो उठ रहे होते हैं, जिन बच्चों ने स्कूल जाना है वो स्कूल जा रहे होते हैं, खवातीन जो हैं वो सुबह उठकर जो है बच्चों के लिए उनको तैयार करना, नाश्ता वाश्ता देना, शौहर हजरात जो हैं वो भी उठकर अपने ऑफिस की तरफ रवाना हैं। तो नींद जो है उसका दौरानिया कम हो गया, यानी कि समझ रहे हैं ना, रात की नींद का। अब कुछ लोग इसको जो है दौरानिए को मुकम्मल करने के लिए या अपने जिस्म को सुकून पहुंचाने के लिए जब ऑफिस से वापस आ गए मर्द हजरात तो थोड़ा सा उन्होंने 2-2.5 घंटे जो है नींद कर ली, 3 घंटे नींद कर ली। और इसी तरीके से बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं तो स्कूल से वापस आने के बाद उन्होंने अगर कुछ खाया पिया है तो खा लिया पी लिया, वरना जाकर सो गए, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने फिर शाम को उठना और शाम को उठकर फिर रात काली करनी है, ये सिलसिलेकार ये रूटीन ज्यादातर लोगों ने बनाया हुआ है। और ये नहीं है कि हर एक का यही रूटीन है, कुछ लोगों का ऐसा रूटीन नहीं है, मगर आप ज्यादातर देखें तो हमारे माशरे में कुछ इस तरह का हिसाब किताब बनना शुरू हो गया है।
तो ये तो खैर एक अलग बात है, मैं जो बात कर रहा हूं नींद की, इसका ताल्लुक क्यों कि नींद से है, क्योंकि रात की नींद का दौरानिया हमने कम कर दिया है और उसको पूरा करने के लिए हम दोपहर को और जो है या शाम को जो है अपनी नींद को पूरा कर लेते हैं। मगर आपको एक बड़ी मजेदार किस्म की बात बताऊं और वो ये है कि जो नींद हम करते हैं इस नींद की भी टाइमिंग है, साइंस ने भी बता दिया है। अल्लाह ताला ने तो दिन रात बनाए हुए हैं, लेकिन साइंस ने भी बता दिया है कि आपने जो 6 से 7 या 8 घंटे सोना है उसकी टाइमिंग क्या है। वो टाइमिंग पर अगर आप सोएंगे तो आपके जिस्म के एक एक अज़ा को सुकून मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, आपका दिमाग जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगा, आप फ्रेश उठेंगे और आप के जो जिस्म के मसल्स जो हैं वो बेहतर तरीके से काम करेंगे, आपके बाकी जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे दिल हो गया, गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, आंतें हो गई, ठीक है ना, नसें हो गई, ये तमाम जो हैं ये बेहतर तरीके से आपके काम करेंगी अगर उनको जो टाइम साइंस ने बताया है उस टाइम पर जिस्म को आराम दें आप, ठीक है ना। इसकी परसेंटेज बनाइए, 100% इन्होंने उस टाइम को दे दिया है। उसके बाद अब उस टाइम से हटकर अगर आप सोते हैं तो आपके जिस्म को की जो आराम की जो परसेंटेज है वो कम होना शुरू हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि जो जिस्म है वो उसको आराम नहीं मिलता उसमें, मतलब आप सो तो गए हैं, आप ये समझ रहे हैं आपने नींद कर ली है अपनी पूरी, ठीक है जनाब, नींद पूरी हो गई आपकी और आप फ्रेश उठ गए, ठीक है ना। और लेकिन जो हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं उनको सुकून नहीं मिला, वो स्ट्रेस में आ गए, ये घुटनों की बीमारियां, ये नसें खींचने की बीमारियां, ये दिल की बीमारियां, ये तमाम इस चीज का ताल्लुक जो है वो टाइमिंग से है। अंग्रेजों के बारे में आपने बड़ा सुना होगा कि वो वक्त के बड़े पाबंद हैं, सोने का वक्त है, जागने का वक्त है, खाना खाने का वक्त है, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सोने के टाइम के साथ साथ हमारे खाने पीने का वक्त भी बिगड़ जाता है। नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, तो ये वक्त जो 3 वक्त हैं ये 3 वक्त हमने बिगाड़ दिए। ऐसा भी होता है कि जी नाश्ता जो है वो दोपहर को 2 बजे हो रहा है जब खाना खा लेना चाहिए, और दोपहर का खाना जो है वो शाम को 5-6 बजे हो रहा है जब आपको चाय वाय पीनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद रात का खाना जो रात को 9 से लेकर 10 बजे तक होना चाहिए वो पहुंच जाता है रात को 2 बजे, तो ये भी आपका रूटीन खराब हो गया। इन तमाम बातों, अब मैं आपको वक्त बताऊंगा कि वो कौन कौन से वक्त हैं जिस वक्त पर इंसान को आराम करना चाहिए, और उसकी परसेंटेजेस भी बताऊंगा कि किस किस वक्त सोने की क्या क्या परसेंटेजेस हैं। ये आपको मैं शो के इख्तिताम पर बताऊंगा, क्योंकि ये मैं तफसील अभी बीच में शो के बीच में इस वजह से बता रहा हूं कि ये है बड़ी इंपॉर्टेंट, इससे सुनने से आपको फायदा हो सकता है, तो लिहाजा शो जिस तेजी से गुजर रहा था तो उसमें ये ना हो कि मैं ये आप कि ये बात जो है जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी समाधों तक ना पहुंचा सकूं, तो इस वजह से मैं ये बातें कर रहा हूं। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि बीमारियों से बचें, अगर आप चाहते हैं कि आप चाको चौबंद रहें, तो आप अपने जिंदगी में एक रूटीन बनाएं, खुसूसी तौर पर सोने का वक्त और खाने का वक्त, ये अगर आपने अपनी जिंदगी में इसका रूटीन बना लिया और खाना जो है वो वक्त पर खाया और इसी तरह सोना जो है वो वक्त पर सोए, तो आप यकीन मानिए कि आपका जिस्म जो है वो इतना तरोताजा रहेगा कि आजकल आप ये देखिए कि 50 से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं उनको आप देखें तो
उन्हीं की उम्र के ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो कि उनसे उम्र से बहुत छोटे लग रहे होंगे, वो जल्दी बुजुर्ग हो जाते हैं। उसकी वजह यह है। और 50 से 60 साल के एज के लोगों में आपको बीमारियां भी बहुत सारी मिलेंगी, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, या घुटनों में दर्द शुरू हो गया, चल नहीं पा रहे हैं, खांसी हो गई, फेफड़े का मसला, ये तमाम चीजें, इसकी जो बुनियादी वजह है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसको अहमियत नहीं देते, इसकी वजह से है। अगर आप चाहें तो ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं आप, किसी भी डॉक्टर से। ये तो मैंने आपको साइंटिफिकली बात बता दी है, लेकिन अगर आप दीनी तौर पर देखें तो दीनी तौर पर हमें आज से 1400 साल पहले इस हवाले से पाबंदी वक्त के बारे में हमारा दीन हमें बताता रहता है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो 5 वक्त की नमाज है, उसके जो वक्त मुकर्रर हैं, और उन वक्त 5 वक्त की नमाज के वक्त के साथ ही ईशा की नमाज के बाद आप खा पी कर सो जाएं, ठीक है ना। और ईशा का वक्त कहां तक जाता है आप सबको मालूम है, आप देखा जाए तो उसके बाद जो है वो खाने का वक्त ही हो जाता है, 9-10 बजे के दरमियान में खाना खाया, बहुत हद हुई तो 11 बजे तक सो गए, ठीक है ना। ये मैं आपको इस हवाले से बात बताऊंगा। तो बस अपनी जिंदगी में ये चीज ले आइए कि वक्त की पाबंदी कर लें, बस उसमें ऑटोमेटिकली सोने का भी सिलसिला आ जाएगा, उसमें ऑटोमेटिकली ये भी आ जाएगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोग मुझे जरूर याद दिलाइएगा, आज समी भी सुन रहा है तो समी तुम मुझे याद दिलाना, मोबाइल के हवाले से और नींद के हवाले से मैं आपको एक टिप दूंगा, साइंटिफिकली भी और दीनी तौर पर भी, जो कि बहुत फायदेमंद है, ठीक है ना। वो टिप भी मैं आपको बाद में दूंगा। और अभी हम जिस ट्रैक की जानिब जा रहे हैं वो ट्रैक भी हम समी की जानिब से डेडिकेट करेंगे जनाब। और समी भाई आपने जो कहा वो ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं एलो फड़ो।

वेलकम बैक है इंगे सुनियो हबीबिया, और आई होप कि आपको ये ट्रैक पसंद आया होएगा। और जनाब, आप लोगों की फरमाइशें इतनी जमा हो चुकी हैं कि उनकी जाने भी बढ़ना बहुत जरूरी है। और दिन में लोग आवारा गर्दी करते हैं और रात में डॉग्स नहीं, अब तो डॉग्स नजर नहीं आते, अब तो इंसान ही नजर आ रहे होते भाई। ये इस हवाले से मैंने कहा शुक्रिया उन्होंने अदा किया समी के मैसेजेस में मैं पढ़ रहा था। अच्छा जनाब, अभी हम एक और ट्रैक की जानिब जा रहे हैं और ये भी डेडिकेशन है, और ये डेडिकेशन अदीला की जानिब से संजू को है, नहीं संजू को नहीं, अदीला की जानिब से रूहे मन को है, और जिंदगी की जानिब से भी रूहे मन को है। अब मैं देख रहा हूं कि भाई इसका आवाज कैसी है, बेहतर है या नहीं है। हेलो हेलो हेलो,

वेलकम बैक कहेंगे सुने ओ मैसेजेस आपके आ रहे हैं क्यूएचआर स्पेस, आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। और जिंदगी कह रही है जिंदगी साथ है और थैंक्स बहुत उमदा आशार पड़े हैं और दिल से थैंक्स जनाब। इसमें तीन चार फरमाइशें मौजूद थी, एक आपकी और एक अदीला बहन की और एक जरीन नूर की, तो आप तीनों जो है वो इनसे इन्हें हमेशा ट्रैक डेडिकेट करती हैं संजू को और वो आज भी किया, आपने रुहे मन को किया है जी ते हैं जी। अच्छा जनाब सलाम सुने हो समी भाई, खास तौर पे ये आपके लिए है। एक दिन मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि एक बात तो बताओ, रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाज आती है, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? मैंने कहा दरअसल मेरी बीवी रोज मुझे निशाना लगा लगा कर चीजें मारती है, लग जाती है तो वो हंसती है, नहीं लगती तो मैं हंसता हूँ, बस जिंदगी शुक्र से गुजार रहे हैं। सलीम मेमन भाई क्या तजर्बात बता दें आप अपने। जबरदस्त जबरदस्त। और आगे बढ़ते हैं जनाब, अलीमुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं। शुक्रिया अदा किया है आपने मेरे मैसेज को शामिल किया है दिल की गहराइयों से, और प्लीज मेरा नाम लेकर बिल्कुल चलाएंगे जनाब, आपका नाम लेकर गाना चलाएंगे, डोंट वरी अलीमुद्दीन साहब हैं जी जी हैं जी। समी भाई कहाँ गायब हो गए हो तुम, जरा बताओ तो सही यार। और मुश्क कह रही है वाओ हैंडसम लव यू। जीती रहो मुश्क। और आगे बढ़ते हैं जनाब, समय आ गया भाई सर ये है गाना कैसा लगा तुम्हें, मेरे को बताइए यार स्टाइल कैसा था, स्टाइल ये भी बताइए। और संजू के मैसेज आ गए हैं जनाब, और क्या बात है माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन नींद के हवाले से गुफ्तगू की, नींद तो वैसे भी हम सबसे रूठ गई है, बहुत कम सोने की वजह से तबीयत में चिड़चिड़ाहट और गुस्से की वजह बन गई है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब जिस्म को आराम नहीं मिलता सुकून नहीं मिलता, हम अक्सर कहते ना यार हमें सुकून चाहिए यार बहुत हो गया यार बहुत, इसी तरह हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं ऑर्गन्स जो हैं इनको भी सुकून चाहिए होता है, चाहे वो मिसाल के तौर पर कोई मजदूर हाथ मजदूर का जो काम होता है वो मशक्कत वाला होता है, वो हाथ से जो है वो बेलचा भी चला रहा होता है, गेंती भी चला रहा होता है, दीवार भी ईंटें भी उठा रहा होता है, दीवार प्लास्टर कर रहा होता है, तो मुशक्कत जो है वो जो हाथ हरकत में कर रहा है वजन उठा रहा है ऊपर नीचे आगे पीछे हाथ हिल रहा है ये एक मुशक्कत है, तो वो उस हाथ को भी तो आराम चाहिए ना, उस मसल्स को भी तो थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए ना, उनकी नसों को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए ना, तो ये जो सुकून जब नहीं मिलता इंसान को जिस्मानी तौर पर नींद की सूरत में कह लें, तो फिर तबीयत में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा, आप देखें कि गुस्सा भी बहुत बढ़ गया है हमारे माशरे में, हमें फौरन गुस्सा आ जाता है फौरन चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन हम इस बात पर गौर ही नहीं करते, इसको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल एक साइड पर लगाया हुआ है, इसकी कोई अहमियत ही नहीं समझते कि भाई इसकी वजह हमारा जहनी जिस्मानी सुकून है कि जो कि हमें मुयस्सर नहीं है, वो मुयस्सर हो ये हम खुद उस जिस्म को सुकून दें तो जहन को ऑटोमेटिकली सुकून मिलेगा और ये चिड़चिड़ाहट और गुस्सा जो है वो खत्म होगा। बड़ी अच्छी बात की, मसरूफियत दिन को थी मगर अब रातों का सुकून भी जागने की नजर कर रहे हैं, कर दिया है हमने, वाह वाह वाह भाई हमारी बातों की बड़ी जबरदस्त तशरीह कर रही हैं आप, बहुत प्यारी नौरीन बहना, प्यारी सी जरीन नूर, अदीला और नज्जोबाजी, नज्जोबाजी कौन है, और मुश्किल ये सच्ची दोस्ती की माला पे रोकर भेज रही हूं, दुआ है ये माला ना टूटे इलाही आमीन। और आगे कहती हाय रूहे मन ये सफर ही असले हयात है, शुक्रन उफ क्या सॉन्ग खुशी दे दी है रूहे मन, और मेरा जहां तुम ही तो हो यकीन कर लीजिए, वाह वाह वाह वाह वाह वा। ये जो शायरी इसमें थी ये उस हवाले से कह रही है। और आगे बढ़ते हैं, नौरीन बहना आ गई हैं
अरे भाई कहाँ गायब थी मेरी बहना, सोकर अभी उठी होगी। और कह रही है अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे मिजाज हैं, ढेरों सलामती की दुआएं आपके लिए और तमाम प्यारे से लिसनर्स के लिए, सॉरी लेट हो गई, मेहमान आए हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझे सो गई थी। आपकी रूहे मन और मेरी रूहे जान को सलाम और ढेरों दुआएं और अच्छा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा। वाह भाई वाह, सही जा रही है। बिल्कुल करेंगे जनाब। और जनाब आगे बढ़ते हैं, सभी कहते हैं ये सॉन्ग में खो गया था, हाय हाय हाय है, एकदम टेम्पो गिर गया, गिरा दिया। नदीम भाई सोने वाली बात पर आप भी अमल करें, शो एंड होने के बाद आप सुबह तक ऑनलाइन रहते हैं, मैं अक्सर आपका व्हाट्सएप पे टाइम चेक करता हूँ। भाई मैं नहीं जाग रहा था। जरूरी नहीं है कि मेरा मोबाइल मेरे याद में हो, रात में चेकिंग हो रही होती है उसकी। कम सोने की वजह से आपकी आईज के डार्क सर्कल्स भी बढ़ गए हैं। बहुत अच्छे। अच्छा अब ये मेरे ऊपर आ गई बात, मेरे ऊपर बात ना लें, मैं अपने हवाले से भी आपको बावर करवाऊंगा कि मेरा क्या इस हवाले से अमल है और क्यों है, ठीक है, और इस हवाले से भी जरूर करूंगा। तो लिहाजा ये जो मैंने तुम्हें अभी बात जो बताई है ना ऑनलाइन वाली, तो ये तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें आइडिया होगा कि चेकिंग कैसे कैसे होती है। हमारी प्यारी सी चाची के लिए मेरी तरफ से ढेरों दुआएं, और सुने हो आपकी चाची से बात हो हमारी तरफ से जरूर पूछिएगा। सलीम मेमन कह रहे हैं, सलीम मेमन चाची अभी इद्दत में है तो मेरी बात नहीं हो सकती, तो लेकिन चाची तक हमारे पैगामात जो हैं वो संजू पहुंचा रही हैं, और उन्होंने आज उन्होंने ही बताया था चाची के हवाले से। तो चाची के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे उनको। और डेडिकेट टू माय सन डॉक्टर मुनीब रहमान मरफानी, डॉक्टर अबू हुरैरा मरफानी, बीबी गुलाम जाहिरा एंड मरफानी बाय मुजीबुर रहमान मरफानी। डेडिकेट करता हूं जनाब सॉन्ग, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह क्या फैमिली है भाई, सारे डॉक्टर हैं, हुरैरा साहब भी डॉक्टर हैं, अबू हुरैरा साहब और मुनीबुर रहमान साहब, क्या बात है। और ये मुजीबुर रहमान साहब ने मैसेज किया है, ये मरफानी फैमिली है, और बिल्कुल ट्रैक डेडिकेट करेंगे। लेकिन अभी जनाब एक और माहौल वैसे ही बना हुआ है तो माहौल को वैसे ही लेकर चलते हैं, एक और ट्रैक की जानिब जा रहा हूं, और ये ट्रैक जो है वो अरसलान साहब को डेडिकेट कर रहा हूं, मिसेज अरसलान की जानिब से, एलो फड़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे, सुने हो आप सबको, ब्यूटीफुल ट्रैक और थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है, लेकिन हम इस माहौल को और चेंज करेंगे। एक से दिल है जुदा लेकिन धड़कते के धड़कने के सबब, एक से दिल है जुदा लेकिन धड़कने के सबब, रायगा तो सब है लेकिन रायगाई और है, लम्हा लम्हा खींच कर बरसों चलाते हो जो तुम, ये है कैदे बा मुशक्कत जिंदगानी और है। ये हमारी नौरीन भैना ने ये भेजा है और चाची के लिए बहुत सारी उन्होंने दुआएं भेजी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी सी बहन। सोने हो आपके छोटे भाई नवीद ने आपको सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम नवीद भाई, एक सांग का बोला है सांग का, बस भाई आप भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब,
1: बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब।
0: सलीम अहमद भाई, अभी हमने अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब की फरमाइश पर ट्रैक चलाना है सज्जाद अली साहब का, तो उन्होंने फरमाइश बहुत पहले की हुई थी और अभी 2 बजे के बाद फरमाइशें हम लेते नहीं, तो लिहाजा हमारे प्यारे से छोटे भाई के लिए वो वाला गाना हम जो कि सज्जाद अली का चलाएंगे इनको डेडिकेट कर देंगे। अमीन भाई मेट्रोवेल से, मैंने सनम से पूछा कि चांद निकलता है किस तरह, चेहरे पे जुल्फ को ढाल कर छटका दिया यूं, हाय हाय हाय हाय। और गुलिस्तान जौहर से कह रहे अदा केरो हाल आए, और शमल अली मेरानी की फरमाइश कर दी है, मुजीबुर रहमान साहब फरमाइश का टाइम खत्म हो चुका है, अभी जो गाने चल रहे हैं वो हम तमाम डॉक्टर्स के नाम कर देंगे, डोंट वरी डोंट वरी, यानी कि समझ रहे हैं ना। अच्छा भाई, सलीम मेमन ने चाची के लिए बहुत सारी दुआएं भी की हैं, आपकी आवाज में शायरी अमर हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है जिंदगी सही तारीफ करती हैं आपकी आवाज की। अच्छा, जिंदगी सही तारीफ करती हैं आपकी आवाज की, अब वो नाम ही ऐसा है जिंदगी का कि जब कोई जुमला सामने लिखा हुआ आता है तो ऐसा लगता है कि वो जुमले में कहा गया है जिंदगी के बारे में, लेकिन ये तो नाम वाली जिंदगी है जी, ते हैं जी। और जनाब अभी जो अशार चंद पढ़े हैं मैंने वो आप लोगों को पसंद आया यार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तो बस इसी हवाले से हम चंद अशार और, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, अभी करते हैं आप लोगों के नाम सिर्फ अपनी आवाज में। और जनाब हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब जो हैं उनकी जानिब से ट्रैक उनको ट्रैक डेडिकेट, उनकी जानिब से तमाम हमारे लिसनर्स को ट्रैक डेडिकेट करते हैं, और उसके साथ साथ हमारे नवीद भाई जो हैं उन्होंने सज्जाद अली के ट्रैक का कहा था, तो उनको भी ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे, तो सज्जाद अली की आवाज में एक बहुत जबरदस्त ट्रैक आप लोगों को सुना रहे हैं अलीमुद्दीन यूसुफ जई एंड नवीद भाई।

वेलकम बैक। तुमसे मिलते जुलते चेहरे, हाय हाय, कैसा लगा गाना? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। खैर जी, बात कुछ और बढ़ाते हैं। नींद के हवाले से जो हमने आपसे बात की थी उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सुकून, आराम ये देना चाहिए हमें अपने जिस्म को। और हमारे मुजीबुर रहमान साहब जो है सही अदा, हम लोगों को ऐसा फील क्यों होता है कि जैसे कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, कोई हम में हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं, हमारी जुबान का कोई सॉन्ग लगता ही नहीं। मुजीबुर रहमान साहब, लगता है आप हमारे शो नहीं सुनते हैं। ये आपकी सिर्फ अगर आप मेरा शो सुनते हैं, हम मतलब पूरे ऑलमोस्ट तकरीबन हफ्ते के अलावा मेरे पूरे हफ्ते में शो होते हैं सैटरडे के अलावा, तो उसमें अक्सर जो है पाकिस्तान, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं, हमारी हर जुबान के सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिराकी और गिलगिती, हर तरह के अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं सॉन्ग जो है वो अपने इस पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहता हूं और सब सुनते रहते हैं। और आपका मैसेज मैंने पढ़ा तो उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप शो रेगुलरली सुनते हो तो मेरे, क्योंकि शो के पैटर्न्स होते हैं और मैं उन पैटर्न्स पर चल रहा होता हूं। पहली बात तो ये कि 2 बजे के बाद फरमाइश नहीं होती, ये बात जहन में रखिए। वक्त मिलता है तो ये मैं अपनी मर्जी से, चलो क्यू शीट में गाना निकल आया, किसी ने फरमाइश कर दी और इत्तफाक से वो क्यू शीट में है तो वो चल जाएगा। और उसके अलावा जो है पैटर्न्स इस तरह के, एक शो जो है वो पाकिस्तानी ओल्डी गोल्डी, पाकिस्तानी मूवीज के सिर्फ उसमें गाने चल रहे होते हैं। एक ऐसा है कि जिसमें मेलो ट्रैक्स, गजलें चल रही होती हैं, शेर व शायरी हो रही होती है। और एक शो ऐसा होता है जिसमें तकरीबन ज्यादातर नए गाने चल रहे होते हैं, जैसे कि आज के शो में है। तो उस इन शो में, ये जो 2-3 शो होते हैं, इनमें जो है वो फोक ट्रैक्स थोड़े से कम होते हैं। तो और इसके अलावा जितने भी शोज होते हैं उसमें भरमार होती है जनाब फोक ट्रैक्स की। खैर इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। और जनाब बढ़ते हैं एक और ट्रैक की जानिब, और इस ट्रैक को भी कुछ शायराना अंदाज में हम आप की खिदमत में पेश करेंगे। और मुझे यकीन है कि ये जिंदगी को भी पसंद आएगा, रूह मन को भी।

पसंद आएगा, नौरीन तौसीफ को भी पसंद आएगा, और भी मेरे जो मेलो ट्रैक्स सुनने वाले जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हजरात लिसनर्स प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको पसंद आएगा। तो कुछ यूं है कि तेरी कमी भी है और तेरा एहसास भी तेरी कमी भी है और तेरा एहसास भी है। तू दूर भी है मुझसे और पास भी है। खुदा ने यूं नवाजा है तेरी दोस्ती से, खुदा का शुक्र भी है और खुद पर नाज भी है।

Welcome back, and I hope you like the song. हैं जी, ते हैं जी, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है जनाब, और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। और उम्मीद करता हूँ कि आज का शो जो है वो आपको पसंद आया होएगा। समी कहाँ हो, सो तो नहीं गए? और हमारी नौरीन बहना जाहिर है उधर मेहमान आए हों तो वो वहां पर मसरूफ होंगी, तो वो गाहे बगाहे आ रही हैं और सुन रही हैं। तो जनाब, नींद के हवाले से बात जो की है, उम्मीद करता हूं कि आप इसके ऊपर जरूर अमल करेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप इस पर अमल करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और कुछ लोगों की आदत बन जाती है तो वो अपनी आदत से मजबूर हो जाते हैं। चलें ठीक है, आपकी आदत बन चुकी है, जिंदगी का एक टाइम आप गुजार चुके हैं, तो कम से कम इतना तो जरूर हम कर सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन आने वाली है, बच्चे जो हैं, उनको इस चीज की आदत डालें। क्योंकि आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि बड़ों के जागने की वजह से जो घर के बड़े होते हैं, अगर वो देर तक जाग रहे हैं, वक्त पर खाना नहीं खा रहे हैं, तो उस चीज से मुतासिर घर के बच्चे भी होते हैं। बच्चों को भी आदत हो जाती है लेट नाइट जागने की, बच्चों को भी फिर खाने पीने के वक्त का जो है वो पता ही नहीं होता कि बस जब भूख लगेगी तब खाएंगे, चाहे वो 3 बजे लगे, 4 बजे लगे, 5 बजे लगे, 6 बजे लगे, 7 बजे लगे, किस वक्त भी लगे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि चलें अगर आप इस चीज पर अमल नहीं कर पा रहे तो कम से कम अपने बच्चों को उनकी सेहत के लिए उनको तो आप उन पर हक रखते हैं कि उनको जल्दी सोने के लिए बेड पर सुला दीजिए, उनको जल्दी उठा दीजिए, उनको वक्त पर खिला दीजिए। तो ये चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी से निकाल रहे हैं और इसको अपनी जिंदगी में हमें दोबारा से लाना है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये बात सही है, बेहतर है, तो इसको अपनी जिंदगी में वापस लेकर आइए। और समी साहब ने खैर मेरे हवाले से सवाल किया, जाहिर है मैं शो कर रहा हूं और अब से नहीं कर रहा हूं, एक अरसे से कर रहा हूं और लेट नाइट शो कर रहा हूं। तो देखें, बहुत सारे आपको ऐसे मर्द हजरात मिलेंगे कि जो नाइट ड्यूटीज करते हैं, उनकी मजबूरी होती है, रोजगार का सिलसिलाकार भी ऐसा होता है कि वो रात को उनको ड्यूटी करना पड़ती है, तो वो तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि रोजगार के सिलसिले में जाग रहे हैं, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, वो एक मजबूरी है। और वो हजरात के लिए ये स्पेशली मैं ये कह रहा हूं जो कि सुबह के वक्त जाते हैं और रात पूरी रात उसके बावजूद पूरी रात जाग रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिला वजह जो है वो जाग रहे होते हैं। समी ने खैर मुझे एक बात याद नहीं दिलाई, मुझे समी याद आ गया। और एक और बात आपसे बहुत इंपॉर्टेंट करनी है, जो जिसको हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है, और वो ये है कि रात को सोने से पहले जब हम लेटते हैं अपने बिस्तर पर तो हमारे हाथ में मोबाइल होता है, और वो मोबाइल देखते देखते देखते देखते देखते जब हम सोचते हैं अब सो जाना चाहिए, चाहे उसमें घंटों गुजर जाए, चाहे उसमें लम्हे गुजरे, चंद लम्हे गुजरे, तो उसको देखते देखते हम फिर सोते हैं। ये इंतहाई जो है सेहत के लिए मुजर है। सोने से कम अज कम एक घंटा पहले आप ये स्क्रीन जो होती है, मोबाइल स्क्रीन, इससे दूर हो जाए, मोबाइल जो है वो इस्तेमाल ना करें, और उसको आप बंद करके एक साइड पर रख दें, साइलेंट करके एक साइड पर रख दें। ये जो स्क्रीन जो हम देख रहे होते हैं मोबाइल की, तो इसमें भी रेजेज होती हैं और इसमें लाइट होती है। ये जो है आप चाहें तो किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं इस हवाले से भी, ये भी हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। इसके नुकसानात उसी वक्त तो हमें नहीं पता चलते, लेकिन वक्त के साथ साथ साथ साथ साथ साथ इसके जो नुकसानात हैं वो हमें फिर पता ही नहीं चलते कि हम इसकी वजह से नुकसान ये वाला हुआ है,
नजरें कमजोर जल्दी हो जाना, या जो रेजेज हैं उसने हमारे जिस्म के कौन से हिस्से को मुतासिर किया है, इसके हवाले से, ज़हनी सुकून के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो लिहाजा एक आपसे ये भी गुजारिश है कि सोने से कम एक घंटा पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करें, लेकिन सोने से एक घंटा पहले इस स्क्रीन से दूर हो जाए। इसके साथ ही जनाब अब आप लोगों से चाहेंगे इजाजत, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते बहुत खूबसूरत सा एक ट्रैक आप लोगों की समातों की नजर कर रहा हूं। अल्लाह हाफिज़।

تو حسرت ملے گی۔

حسینوں کے میلے کسی نے بھی مقبول